गाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासी मैला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती जो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगा हम ले ना सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू ले राती। हर हर

नानक जन तुमरी शरण आई हर वासु लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल जुगता कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संग।

तुम आपे आप अपा की जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की तनासी मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुर पूरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने तनाश्री मैला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ते आई हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर से प्रीत बन आई बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनाश्री मेला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊं रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ तनाश्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गावया सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी।

रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी। सनातनी महला चौथा।

ज्यो पावै त्यो रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा घर पहला चौपदे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराध मिटे खिन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो।

नाद हेत सिर डारे कुरंका उसी हेत बिदारा देख कुटंब लोभ मोहो प्राणी माया को लपटाना अतरचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोविंद अवर संग नेहा को जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला सनासरी मैला तन्या कर कृपा दियो मोह नामा बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी।

पयो परदास सदा सुख मन में सतगुरु पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा तई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा।

पूरण हुए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी, अलंकार मिल थैली हुई है, तांसे कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांध्यो, गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्हीं तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके, दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तत ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगनासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार कराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

बम हर पात्रे के है तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दब पसन संगीत अमृत संग नए रुच आवत दिखे ठगोरी प्रीत उत्तम।

गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा। पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास पास मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अंध रूप रवियो सब मध्य जब कत पेखो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनाश्री मैला पंजवा। जिनकी ने बस अपने त्रैगुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओ डीठी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुर आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत न व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझा।

सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जात ताप तमन गसबा कर उर्द ताप ले गैन ए बिद न कतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

नंगा बौर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समगरी जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनस्यो प्रीत न लागे संते संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्यवा हर हर लीने संतो बार हर के दास

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार, त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक।

गुरु समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत पयाल पूमंडल, सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस देश।

चाल संग ना चाले तिन स्यो हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा साथ कर्म नहीं पावे दीठा झूठ तो क्यों रचियो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछोताने जो तुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रब मेरा तनाश्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के पगत गोविंद सुख संतन के बिन सी चिंद जह साध संतन होवे एकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम देकर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कट डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रात मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सवठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सही पगत जे साचे भाने जम काल ते पए निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार कट कट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरेणार तनाश्री मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संती ए विद जाती तनाश्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ से पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में।

अनब सदा उलास रहाओ चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा ते आए ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये दिनस जाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे कट ऊन न होई सास सास समालता मेरा प्रभु सोई अचल अछेद अपार प्रभु ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप सामत देओ दयाल प्रभु जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभु रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाचन पाजन खाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। तिस त्यों ना लाय हीत, जाको किश ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमख जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना।

हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह मां पौ जल तारे रहाओ सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे साध संग जप निसंग मन निधान धारे चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे तनाश्री मैला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग सहाई जप खत्म होए रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए न साके जाले रहाओ निरसन कौ तन अंधले कौ टिक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले सनासरी मैला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अनग सगल ही जाई गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव पाको कोई न पहुंचन हारा जाके अंग गुसाई जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आई तनाश्री मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पोमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा क्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट संवार जैसा बित तैसा हुए वर्त है अपना बल नहीं हारे रहा आन त्याग पे एक आसर शरण शरण करे आए संत अनग्रह पे मन निर्मल नानक हर गुण गाए सनासी मैला पंजवा जान को हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जा का सतगुरु पूरा ठाकुर गाये आत्म रंग सरणी पावन नाम से आवन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही सनासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डैकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुह कर पावे पेक करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे ना ही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनाश्री मैला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जा कै मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन कै पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मैला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल सनासरी मैला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार को तैसे ही प्रपाल राव
नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा सनासरी मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जाड़े राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहा तन सो थान तन ओ पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनातरी मैला पंजवा छाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिलस ना कतहू जात सत गुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूप गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी सनासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती सनासरी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेते दयाल पुरख बख्शन

राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त वैकुंठ साद की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाय प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवें सुहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक सनातरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूर्ण काम सनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार करण हार रखवाला हुआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर कारो पूजा कह फूप से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया

आके बंद अनक दो खातन साध पूरे प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ राज जोगन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे शरण समरथ अकट अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा। रहाओ कोई हो आकर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में कहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन तास्यों मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख हुए पछाना। तनासरी मेला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करूं जे बिद मन को संसा चूके पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो पत्यों उदर परो। कहो नानक प्रभ बिद पछानो तब हो पतित करो।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, हावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया प्रवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जय देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुर पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभु के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभु मन पति आया, पड़ पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पा

उड़ जायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया। अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे। कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर से मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल अश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे। जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे। मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत होए हमारी। तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद पे त्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाच।

दुर्वाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। साथ ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख किल रिख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी तसंगम सत्सते। आराध एकंकार साचा, नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। तनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया, फेर न सके कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाए, सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा, नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म सबाए, जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबक सिंजापे, साचा सिरजनहारा। भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए, गुर कै शब्द विकाने, पारस पर कै पारस होए, जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे, साचे के वापारी। भूख प्यासो आस क्यों दर जाए साजियो, सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो, सच नाम ते आए साच चवाए, गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन, अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई, आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, कृष्णा नाम निवारी। तनासी संत मैला पहला। तिर संग मूठड़ी खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख ना मिटई पूर्व कमाया, क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती, हम गुण बै बैरोसी। तन जोबन आख की छाया, बिरद पए दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुनिया। बूढ़ी कर का लियो गुर कै पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो, हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेयड़े दिन चारे, निज कर जाए बह सत पाए, अन दिन नाल प्यारे, बिन पगती कर वास न होवी,
सुनियो लोक सब आए, नानक सर सीता फिर पाए, राती साजे नाए। फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो, रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी, निव निव भगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती, लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण, फिर स्यो प्रीत प्यारी। फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो, झूठे वैन चल

रहनी। गुर शब्द ना माने फाई फाथी, सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाने, गुरमुख सहज समाए। तन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती, तिर रली आला जो बन बाला, तिस रावे रंग राती। गुर शब्द विगासी सोरा वासी, फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई, तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी अन दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया। मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे। हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन बिद की जय। सो दिन आवन लागा मात पिता पा।

हो हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन का सी तजे कबीरा रमैये कहा निहोरा रहा हो। कहत कबीर सुनो रे लोई परम न पूलो कोई क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोक जैबो ओछे तप कर बाहुर एबो क्या मांगो किछ थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिबे बड़ियाई अंत न चाहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई अजामल गज गनका।

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया न लिपटाओ। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया।

साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंदी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना तर्क नचा

बिन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काए पूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी, स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे। स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी। अनिक पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी।

तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारवी, कर्म कर कपाल मसीत श्री, अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर, शिखर सुनागर नदी के नाथं, कर्म कर खार मसीत श्री, दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण, बन फल बिसल आन तोखी ले हरी, कर्म कर कछौटी मफी तसरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी, कर गेहन ताचे मोह जापी अले, राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल रा

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी पगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलन था जैत सरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत

सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह, तामह संतोख न पाया, हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाये, जैत सरी महला पंजवा, करती जा दुपदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझियो, सर्ब निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अलपइयो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो, जैसरी मैला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभु को नीरो, बेकुमार बेअंत बड़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को, जैसरी महला पंजवा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ, सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिनसे परम अंधेरा, थान सनंतर सबनी जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना होई है फेरा, जैसरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग, तरयो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग, जैत सरी मैला पंजवा, मन में सतगुरु ध्यान तरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो मया करा रहाओ, ताल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करुणा पत, गयो चरण आसरा, नाव रूप पयो साध संग, पवनिद पार परा, अपियो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा, जैत सरी महला पंजवा, जाको पय गोविंद सहाय, सुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको ब्याज न काई रहाओ, दीसे सब संग रहे अलेपा,
नै व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमल अनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौ पाए।

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप।

आप गवाया। जय तन पाग मथाने बहा पकड़, ठाकुर हौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाने। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

बधाई। माँ मंगल रहस थिया, फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया, साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी, प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूली है लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक निर्थ न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिलेन थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत साथियरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्या करते पाप अनेक माया रंग रट्या लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उदम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं।

जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम किन ग्रह में बस न देवई जिन सोई है कर अनर्थ गर्भ।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

छतर चमर तक आसनं रटंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन।

थोड़ी सपने से पीछे तेरे मुँह रख लाया, बिसरे राज रस भोगे जागत बस

बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड़ तम

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

ਅਜਨ ਲਹਿੰਦੜੋ ਮੁੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ ਪੌੜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभु दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

آٹھ پہر ہر دھیائے کے منیچ پجائی وڈے بھاگ ست سنگ ہو۔

جپنت نانک ہر ہر ہرے چھڈیو ہب آپے لگنو چرنا پاس نٹھڑو

गुरु नानक पतत उधारणे भोजन भिखम असगाम गुर बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपा।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो ने बूझियो अपनायो। पर उपकार ना कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन

न आया। पयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा। लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा। मस्तक ले ले लावो महापतित ते होत पुनीता। हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो। कियो त्वारो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है। आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी। सगल रेण होए रही है साधु संगत होए परापत। ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे। तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता। मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग ना चाले। मिले कृपा गुणगाम रहाओ राज माल अनेक पोगरस। सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविद को तावे। सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो। दीसे सगल बात है खाम। कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे। जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी तप है। नाम मेरे परवार है। नाम सखाई सदा मेरे संग। हर नाम मोको निस्तार है। विखे विलास कहियत बहुत तेरे। चलत ना कछु संगारे।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दा संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, सांत सहज रहस्य मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तासन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहा ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रत बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित ऊख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुर मो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके।

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

पागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन तिसी को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकर तिसी को तीन टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म तरम जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट काट तो सासंग मोरे मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पे मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमक ही रहते अपने भगत को पूरन दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान आठ पैर रसना गुण गावे जसपुर अगावे समरथ कान

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ, देह विसरव रया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद दिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास। पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास। सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुख दाता। अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन। विस्मन विषम पै विस्मादा आनन बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। ओडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया। गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ। छोड़ सियान बहु चतुराई दोय कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल। वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग दे गए परमेश्वर। कोट फला दर्शन गुरडी ठे रहाओ। गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे। अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे। बिन हर पजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे। नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा। सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ। गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा। कर गए काढ लियो जन अपना दिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा। नानक शरण

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा।

पासों रुच उपजाई दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई सह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ। पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हिंग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मजे बेल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे

सुन मन अकत कथा हर नाम। रुद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पज गुरमत हर राम राम। रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो, नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुरु दान दिवायो। रहाओ किस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया समते तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर, तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी, दुख हों में रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत्व विस्तारा, विचता तू पंच

तारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता, जहाँ का अंत न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रात में उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर, इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा, जप मन हर हर नाम हित जाए, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर सो प्रीत लगाए, दिन हर प्रीत हो।

वायो सर्व सुखर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

मैं दर मांगत पीछिया पाए रहा केसर कुसुम मृगम हरणा सर्व शरीरी चरना चंदन पगता जोत नेही सर्वे परमल करना। क्या पट पांडा कहे ना कोए ऐसा भगत वर्ण में होए।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला श्यामड़िए मानड़ा।

शर्म तरम दो छपल होए कूड़ सिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े किताबा कष्ट में करें खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक गावे मासपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास

सचवा न्याओ करे वो मुसोला, काया कप्पड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समाल सी बोला। आन अड़त्रे जान सतान में होर भी उठती मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

गुर प्रसाद नान गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरै संसार। कहो नानक।

दिन सुरैन जे तुद अराधे सो क्यों दोजिक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार, गुने उसके सगल आपू तेरे जन देखे दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाओ, गुर मिल नानक बूझिया सदा एक कसगाओ। किलंग महला पंजवा, मीरा दाना दिल सोच, मोहब्बते मन तन बसै।

पावे गुण तामन तामन करे तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया तो ये रे सोई जे बहुत

हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहा हर के गुण हर पाऊंगे से गुरु के पाए जिन गुर का

तिन के चरण पखाल दे तूर कोल कोल पी जाए। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर केतिया रंग रलिया माने। सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ हों गुर वित्तों सदवारिया जिन बितड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी। हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वड दाने हो सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहबो तू है मेरा मीरा तुझ पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंग।

जाग में हो रे मना जाग में हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय है सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाम हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेव उत्तरा पाए, दिल का फिक्र न जाए, सुखदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुदा आमद

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पापसा सामने बरना। अशपति गजपति नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होय निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित सत्सर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चातर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जोग ना सुनसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सुजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

रहा वा। आपे कंदा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जावे।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर बेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रस मान, दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर दंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठ है हर रंग चालिया, फिर बौर न होवी पंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठ है हर उपदेशिया, हर के त्याराओ निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग। हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाते किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पायो सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे दया प्यार सबक न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरुमत नगरी खोज हो जाए। हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई। कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब कुछ गवाई। रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौ कत अनत साद लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पे।

तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिख लिला रहा, तिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए, हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वह तो उनकी रीस करे, किस हल्त पलत मुहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा से हर पाई है, सिर हिंदक कह पवे चारा। जिस कार वृत्ति सोई जाने, जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौ पीढ़ी आग जुगाद बकीली, किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा, जिते हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत विद लया ना जाई। हर तन संचिय पाई, जे हल्त पलत हर होए सखाई। रहाओ सत्संगति संग हर तन खटी है, होरथे होरत उपाय हर तन किते न पाई। हर रत्ने का वापारिया, हर रतन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाई। हर तन रतन जरे हर मानक, हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिवलाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही। हल्त पलत हर तने की, पगता को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, ए हर तन अग्नि तत्तर पानी है, जमदूत है किसे का गवाया न जाई। हर तन को उचका नेड़ न आवई, जम जा गाती दंड न लगाई। साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया, तिना एक विख नाल न जाई। हलते विस्थाक दुहेले पै हथों छुड़ गया, अग्गे पलत साकत हर दरगे टोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है, संतो जिसनो देख तो हर तन लग चलाई। इस हर तने का तोता कभी न आवई, जन नानक को गुर सो जी पाई। सुही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवे सो पगत को परवान। किसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसके हृदय वसिया हर पुरुष भगवान। गोविंद गुण गाये।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध प्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन पर

कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना, तुमरी मैं मां बरना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम कर तोई, ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर न कोई रहाओ, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आ गया अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे, विचे धरती विचे पानी विच काश अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए, हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती

क्या तुझ पे आग सुनाई है, बुरा पला तुझ सब सू जाए, जिहा को करे तिहा को पाई है। मेरे साहेब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुझ सब सू जाए, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस भगत आए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाए। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे तेहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो खाए पाए। कोई महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुरबचनी जिना जपया मेरा हर हर, तिनके हो मैं रोग गए रहाओ। ब्रह्मा विष्ण मां दियो त्रै गुण, रोगी विच हो मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। हो मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटे, तिस जन को हो बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे।

रखी है अपना कीता किछु ना होवे ज्यो हर पावे त्यों रखी है मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साकें ज्यो पावे तिवें बस रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे तो कर्म कमावे जिहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिस्ट सब साजी कोई छेवा करियो जे किसीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावे इक मनमुख करे सिरोवे हर की वडियाई हों आख ना साका हों मूरख मुग

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजै अभिमाने। तैस्यो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अवनाशी रह।

सगल सामग्री मैं कर की जोड़ी, आपके आसी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुणकंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत श्रीकाल पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंतरी जाया, वस्त्र लीना गुरु परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर ज्योत उजियारा, सेज बिछाई सर्द अपारा। नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा, तुम क्यों ही हो मिलन प्रवताई। खोज करो देखो प्रह जाई, सुन सदेश रो प्रह गृह सेज बिछाई। परम परम आयो तो नदर न पाई, किन विध हीरो तीर निमानो। मिलता जन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती तिर सज्जा गंता। पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे।

हुए कृपाल सब मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करे फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तय फिर है पाई, खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमाओ, क्या कहरी जाओ, विद कित पाओ दर सारे, मित नहीं पाए अंत न लइए, मन करते चरनारे, पाओ दान टीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदासे पुरुष वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बोर बोर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिके नाद करन सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुही महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला सात फिरता। नीर बिरोले खप खप मर।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बतावो मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम दे।

तह गीत नाद अखाड़े संगा उहा संत करें हर रंगा तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वर्खा दोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सुही मैला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे पेट संग ए पवजल तारे।

कृपा निधान नानक सो करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जा को बिन सतबार न काई, ए सुखना सोत नहीं।

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किच कारे जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करणे हार, सगल सिष्ट पौधे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस वेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सखिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। जन्म जन्म के पै मोह निवारे, नानक दास प्रभु कृपा धारे। सुही महला पंजवा, अनेक बींग दास के परहरिया, कर कृपा प्रभु अपना करिया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरण आए। सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहे।

सदा सदा जपिए हर नाम, पूरन होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी, रैन दिन गाओ, जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ। सो साहो सेव जित तोट ना आवे, खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक।

आद गावें गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माजरे पाज दिन नित रहने जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ सर्प विकार दो कर चारक राम रतन रिद तिल नहीं तारक परण पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रभ अंतर जामी सुई महला पंजवा साथ संग तरे पैसागर हर हर नाम सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिनसे गुर पूरे मिल पाप सजायण रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मन तन निर्मल साज सुहाओ आठ पैर पार ब्रह्म त्याये पूर्व लिप्त होए ता पाये शरण पे जप दीन दयाला नानक जाचे संत रवाला सुही महला पंजवा कर का काज ना जानी रूड़ा चूथे तंदे रचियो मूड़ा जित तू लावे तित तित लगना जा तू दे तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीरा ते राम रसायन अंदिन माते बहा पकड़ प्रभ आपे काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे उदर स्वामी प्रभ कृपा धारे नानक दास हर शरण द्वारे सुई महला पंजवा संत प्रसाद नहीं चल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याए हर चरण वंशी ने ताते करते अस्थिर कीने रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी ताते काटी जम की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी रहाओ कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर शरणाई सुही महला पंजवा करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूरन कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संत रवाला सुही महला पंजवा तिस दिन दूजा और ना कोई आपे थमे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरथ अपार रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ नानक रखा आपे होआ तू ही महला पंजवा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे पाग परा

दया न पाए, अनेक जन्म बीतियन परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किर्त पवाई, सुन साजन सं

कामना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए तीसन पीस ओट कामरी सुखमन संतो खाए ऐसो राज ना कितै कार जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ टंबर बेत्या जे रच लो भाए सब किस तुम रह

बुलावो। मिस्त बचन बेनती करो दीन की न्याय, पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार। चितवो मन आशा करो जन का

ना जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया।

अब साधु संग परिया हर द्वारे करिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावै तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौं सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

आहा निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल परी जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभ अपने स्यों, जल फल में यल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जम ताके नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्ष्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पै निकाने, सुही महला पंजवा, माँ अगंते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय, तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा,

परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या।

बादशाह सच्चे से पीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन।

ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा, चरण तूर तेरी सेवक मांगे है, तेरे दर्शन को बलिहारा, मेरे राम राय ज्यों

नानक को प्रभु है कृपाला, सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा। तुझ चित आए मां आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए। मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी, अरदास करी।

अमृत वचन हृदय और धारी तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी तुझेवड़ अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई। दो कर जोर मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नहीं, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन आठ

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर सात संग नाव जाते सगल मनोर तिसका

जिस दया करें प्रभ आपे, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदियां महला पहला कर तहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंक मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना फुल टंग ना मीठे बैना। रहाओ सह सिदार कामन कर आवे, पां सुहागन जा कंते भावे। ना किस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत ना ही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन ना है जियो। अवगण मुठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित

से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खात रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है, नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो। बिन शब्द तै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

अहिवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूरख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है, गुर की कार कमाए लावा तारे आनिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

आपे रह समाए सो विस्माद कया। तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने, हों में दुख ना संताप है। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रे आसमाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे, विखटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, हों में विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप साचे रंग राता, गुर कैसे सुवाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत्सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अक्सर तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किस केरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विचो जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब कुछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सुआल्यो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का सबद समाले हर की भगत सदा रंग रा

काया अंदर सब किछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगत बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौनिध पाईए, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, इह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाईए, मोल कित ही नाम पाईए, नाही नाम पाईए गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सत नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही, का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन, निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन, मोह पाले ते निंदका नरके कोर पवन। हे मन जैसा सेवै तैसा होवै, ते हे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु ना जाए, महापुरखा का बोलना होवे कितै पर खाए, ओए अमृत परे पर पूर है, ओना तिल ना कमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवट पागी जे

मनमुख मन न पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिय आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे तां सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पया किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सों लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन।

पूछे ता गुर वडियाए। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कत्तर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत तत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

मिथ्या कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ। मोह मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

जान ना पाईए प्रभ दरबारा, आसा अंदेसा बंद पराना, महल ना पावे फिरत बेगाना। सगल ब्याज कै वस्तर दीना, फिरत प्यास जो जलबिन मीना, कछु सियानत उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे, पयो कृपाल सा।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदियां करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाईए तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कबू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड़ कमावे तंग जियो। नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगे पैदा जाए जियो, ऐथे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम सन माल जियो। मन से कबो न विसरै, जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाईए, ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा, अष्टपदियां

हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दाता।

पहला कुचजी ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सो रावण जाओ जियो एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो।

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा ने लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल न जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुर ना तृष्णा पुखड़ी हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निव ला।

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज न पाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रडे का बिन फिर तन कुमलानी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे किसकी बलराम जियो रव रहा जुग चार त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वेसे नानक में वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सोहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रग करे बलराम जियो। किरति पाया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना नरहने केवल रव रहा त्यो लोई। माया निराशी रोए विचुन्नी बाली बाले हेते नानक साथ सब सुख मैली गुर चरणी प्रवचेते। बाबुल दुत्री दूर ना आवे कर कई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो। साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सच संतोष सवा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक बिछड़ना दुख पाए गुरमत पंथ समाए। राग सुही मेला पहला संत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंदिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मंथन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल पै देवाने मन राखिया गुरु ठाए। नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए।

आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए। नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

प्रसाद। राग सुई छंत महला पहला कर चौथा। जिनकी आतिन देखिया जग पंदड़े लाया, दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया। वियाहो हुआ सोग सेती पंच शब्दी आया, जिनकिया तिन देखिया जग तंगड़े लाया। हों बलिहारी साजना मीता वरीता, ए तन जिन सू गा दिया मन लीड़ा दीता। लिया का दिया मान जिन सू से सज्जन क्यों मिसरे, जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गहर है। सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता, हों बलिहारी साजना मीता वरीता। गुणा को हो वे वासला कद वास नहीं जय, जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय। सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए, पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए। जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत की जय। गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय, आप करे किस आखिए होर करे न कोई। आखणता को जाई है जे पूलड़ा होई, जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले। सुने देखे बाज कहे है दान हर मंगिया दिवे, दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप करे किस आखी है होर करे न कोई। सूरी महला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई, गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले, इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों छले। परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई, मेरा मन रा

कोई अंजन कैसा अंजिए जैसा फिर पावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जनावे मार्ग पावे आपे मनवा ले वे कर्म सुकर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे पंत मंत पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुरु सबदी सच जानिया साजन होन आपने क्यों पार कर जाहि साजन राते सच के संगे मन माहे साजन करे रलिया कर्म कर्म सब आया अठहठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप उसे मत होचिए क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूडो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुरु का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न पुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो, गुरमुख हर फल पावो। गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे। बलिहारी गुर अपने बिट्टो, जिन कारे सब सवारे। हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो। नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावो। सुन हर गुण कीने सहज सुभाए, गुरमुख सहजे नाम ते आए। जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण।

दै जिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे करमाही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग सुही महला तीजा करती जा, भगत जना की हर जियो राखे है।

आप लखानी। भगतां की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा मन भाया। नानक भगत सोए दर साचे जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी। हम जिन

मेरे प्रभ आप मिलाई राम गुरमति कर सांगन हुआ प्रभ रव रहा सब थाई राम प्रभ रव रहा सब थाई मन वसाई पूरब लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रभ पानी सत सिगार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते हैं नाम नवै निज पाई सूही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अंजिन पगत करे गुर आगे साखन कंत प्यारी गुरु का शब्द वस्या कट अंतर से जन शब्द सुहाए नाम तिन कर साधी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी

गवाया राम विचों मो चुकाया जहां हर पाया हर कामन मन पानी अंजन गुण गावे नित साचे कच्चे अकत कहानी जुग चारे साचा एको वर्ते बिन गुर किने ना पाया नानक रंग रवे रंग राती जिन हर से की चितलाया कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम गुरमति मन निर्मल होआ।

बहु कृपा तारी हर कै सबत सुहाए राम मिल सबत सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए।

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वडपागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

हर तूर देवो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम। पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम प्रगासा। हर हर आनंद भया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाए।

आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए, जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नाम सह सुभाए, आया लगन गणाए हृदय तन उमाया बलराम जियो, पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो, पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरुष अगम अगोचर सद नवतन बाल सखाई, नानक कृपा करके मेले विछड़ करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कैलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो पाप सजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ो हर नाम से आवो सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर की ला मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकप कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो, जन नाम कबोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी ला मन सहज पया हर पाया बलराम जियो, गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंगिन हर लिवलाई, मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई, हर प्रभ ठाकुर का

खास शब्द विलाई अंजन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब में रब रहा।

न पाई राम, अंतरे हो में ममता काम क्रोध चतुराई राम, अंतर चतुराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पावे चोटा खावे।

पाथ न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वट पागी सच नाम लिवलावे, मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वढाई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवां।

से हम मन संदेवा सतगुरु है मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सभा से वड पाजी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड पाजी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा पुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम।

राख लाज पगवाना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ कराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दीजे संत ना कीजे, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचे कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

जल थल मैयल पूरन स्वामी, कट कट रहा समाया, जिस ते उपजिया तिस माए समाया, कीमत कहन न जाए, जिसके चलत न

लागे, हर रंग अंजन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनात सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण हो जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अट गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम। हो किछ नाही एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

तू करवत मेरा ओला राम हौ बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यो मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन को सतगुरु मेरा पूरा इस दिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब किसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु से आई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर ताप है हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा।

पातारी सकल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए। पूर रहा कट कट अविनाशी थाम थम कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सोही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम। हर आराधे जन पंख सा दे दूख न व्यापे कोई जल कल मई अल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाठे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा की जय नेत्र देखे दर्श तेरा। कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहस्याना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार ग्राम। पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम। हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकत कहानी। पला संजोग मूरत पल साचा अचल नींव रखाई जन नानक प्रभु कहे दयाला सर्व कला बनियाई। आनंदा वजह नितवाजे कार ब्रह्म मन उठा राम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पैच उठा राम। अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया। कर मैं नवनिद परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कार्य आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर राया राम मेरा मन सोया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम।
गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन रजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखे गामे हित कल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तार।

मिल सतगुर पार नंगाए राम। गुर सबदी करिए बहु न मरिए चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई पर मानो तामन सहज समान। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई, अनग दिनों सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाए। सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने, कहो नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने। अनग दिनों कहे नित सखिए मंगल सदा हमारे राम, आप न रहे प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम। सह सुभाए पे कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया, ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन किस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जप सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए, सगल सामग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी, सबत सवारे सदगुरु पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वडी आई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला, जी जन सब सुखी वसाए तब आपे कर प्रतपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पर पंजन अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बहु न पाई है जोनी है, नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साध छुनी है। सुही महला पंजवा संता के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध रिद दीने करते तोत ना आवे काई राम, खात खर्चक बिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट ना जाई अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ ना थे दुख ना नेड़े आया। सांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूख सबाई,
नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे साध संगत संग बनी। जिन उद्दम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। अखर तीरथ पुण्य क्रिया महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो। गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तने अमृत पी जय। बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान अवगुण को ना सितारे। पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा। नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हूँ चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई। आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो। गुर सतगुर कहया जी।

बार राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

आवे जाए, कर्म अर्थ काम सब पूरन, मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक शरण कृपा नित स्वामी, बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा, श्लोक महला तीजा। सू है वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए, तिस छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वदिया रोग, शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार, सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली कर पार, नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल, नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पाताला, हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला, सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा आपे प्रताला।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एनस लागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा तारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरक की चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो गए लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे किमे सिगार पेय सहरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विदान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आये मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख

सूहा वेख छड़ तू तातिर लगी प्यार, सूहे वेश तिर किने न पायो, मन मुख दज मोई गवार। सतगुर मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार, मन तन रथा लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंद सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूट कुटंब है मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता। सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वश किता। जेहा तुर लिख पायो न से कर्म तमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन,

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी ये तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजै तंत न आयो एवें पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरत संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवे आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन।

गणत ना आवही कितनी लास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो कृप सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार लग्या फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाई है नामे गुण गावे गुर के सब चलाइए हर नाम समावे सतगुर सेवा सकल है सेवे फल पावे श्लोक महला दूजा किसी कोई को

राम को नाम न कभू लीना, राम ना जपो कवन मत लागे, मर जैबे को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार इक्सर दुख पाया, कंठ गहन तब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत दिन भी जाए, पर गए बग बैठ आए। रहा काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रनिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया। रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जा को हर रंग लागा, तम तम सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सरा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया तया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन, थाके थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना खाक समाया, बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। रहा तब लग प्राणी तिसे सरेवो, जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले, मन जिन टाले पासा, जो जन जान पजे अवगत को, तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर ते जन कबो न हारे, पाल जो जाने पासा। सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सवतावे, रैयत बचन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही, बोगश काला लेही, बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी, जिन ना निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दमंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर तागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोपीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक आती में पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

जो किछु होआ सब किछु तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चकराई। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हों बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन ना।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी,

तुम्हारी सर्व चिंतित तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे कान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलग अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार ऊंदी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात ना होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया ठाक रहे मन साचे पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला। गुर बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम कुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जियोरा रह न सके खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली सास दिरास जतो अपने हर पाली सब बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला।

मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हो तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सब रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई दर्शा तै गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे न जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सहत्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम से आई। जह देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द अति मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहा माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना। ओ तोवे तोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो जनमानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगद अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नामे रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सम्मा। कोई फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सके हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रवतारी मिल सतगुरु पार करा। रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मद्दम जिन हर हर सेव न करा। ते नर पाधीन दोचारी
कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे है कल युग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब दिख रखो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर तजो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सो ही फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनित उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं। अपना भला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जन कहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तिवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा, अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अम दिन अनद आनंदे। तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकट मूड माया के बदक, विच माया फिरे फिरंदे। कृष्णा जलत किरत के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरत है, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो, हर संत पगत तारनो। हर पर पूरे रहा जल फले, राम नाम नित गाय हर दुख विसारनो। राव हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हारा। गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा। पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी। सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे कर पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे। कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो। क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से। हर शोक से रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्व पुयंगा, हूं मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिगार करे नहीं पावे,
जा होए कृपाल तो गुरु मिलावे। हाँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना पाया, हर का मंदिर कुछ में लाल, गुर खोलिया पर्दा देख सही निहाल, जिन चाखिया किस आया साध, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आज सुनाया। बिलावल मैला पंजवा। सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प भेव, तरत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम ते आए। राव सबनी थाने रवे आप, आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने मूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोए अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोए निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहो प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ दसे। प्रभु का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम उतार, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा। कर दूजा या नड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, रासन को तुम एक रहा। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरुदेव स्वामी, सब कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नाम की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो, अमृत नाम अराधिए निर्मल, मने होए प्रगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने, तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। पूछ अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप कनेरे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा। दिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुड़ गई सगली, सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती काई, सादा दासी थियो, नानक से दशोभा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित क्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संग ना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस ओगण अतरूप रस माते, इन संग सूख न पाया, तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड पागणी सखिए, संता संग समाये, कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाये,
तह जन्म न मरण नाम जान। नेचल सरनी पाये प्रेम बिछो न मोह व्यापै, नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतड़े सह सुहाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाए। सपी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छु जाए। नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा, ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक रूप सगलो पासारा, आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल न जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, तूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे,

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर बूट संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा।

रहाओ अंध कूप से पर गह लीना जय जयकार जगत प्रगटीना नीचा से ऊंच ऊन पुरीना अमृत नाम महारस लीना मन तन निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाए मीता चरण कमल सो लाइए चीता हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत जन्म बुझे हर हर गुण गावत रहा सफल जन्म होवत वट पागी साफ संग्राम में लिव लागी मत पत तन सुख सहज आनंदा एक निमख न विसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास तनेरी अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभु कर मैं आया रहा भगत वत्सल कह का तुम्हारे संसार सागर अब उतरे पारे पतित पावन प्रभु बिरद वेद लेखिया तार ब्रह्म सो नैनो पेखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दूख पलायण। बिलावल महला पंजवा कौन जाने प्रभु तुमरी सेवा प्रभु अविनाशी अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभु जहर गंभीरे ऊंच महल स्वामी प्रभु मेरे तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ एक बिन नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपको कछु न होवत पाई जिस प्रभु देवे सो नाम पाई कहो नानक जो जन सब पाया गुण निदान प्रभु तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा मात गर्भ में हाथ दे राखिया हर रस छोड़ दिखिया फल चाखिया सज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए सिंगारे मूड़े तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया कर्ण हार एक निमक न जापिया महा मोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया कटल बिसरिया वड्डे पाग सब कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंद पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय सुख सहज आनंद कणे गुर पूरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल संजाम करे प्रभ आपे ऐ मनोर सो प्रभ जापे हर कर्म काम मोका दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम रंग माणिया कर आया पूरे गुरियाणिया। बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर सुवार साखत नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा शक मारो साखत बेचारा निंदा कर कर पचै कनेरे निरपट फाक गले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

परम सोमजित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना पाहु बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय ते आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सतगुरु पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप बिन

लोकन की आवड़िया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पक्ति लागो लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हम आगो अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन शीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवड़ पागा मैला कदे न हो गई नहला गए दागा प्रभ पाया सुख पाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया न जाए रहा जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्द तेरा पार जम गुण तेरी बाणी पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी बिलावल मेला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये कहिए काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरिया सर तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे बिलावल महला पंजवा निर्भ हसे सिर ऊपरे कछुआ नहीं बूझे बाद साब अंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई माटी से माटी रली नांगा उठ जाए जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल सतर्ग कीता

जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो त्रिण मेर दिखीता, श्रम करते दम आज को ते गणित नीता। कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा। अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साद, लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद। ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद, राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाऊं।

हेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आ गए पगे जब साथ संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेकल आसन मिटी चिंत माही डोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया साथ संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब कम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी तन मन अतनो जियरा फिर हों वारी रहाओ एक छदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन ए मन पया बिनसी अकबारी निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी दया मया अर निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उपत स्यान कछ नहीं ना ही कछ काल

सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश धर हर नाम ते आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास न विसरे अनपते न तावो सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो सत संतोष दया करम शिगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब में प्रगताया जिस जन हुआ साध संग तिस पे कह हर गाया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभु सब करे कराया पतित पुनीत कने करे ठाकुर बिरदाया मत फूलो मानस जनमाया परमाया नानक तिस पत राक्षी जो प्रभु पहराया बिलावल मेला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे क्यों बिसरे प्रभु मने ते जिसके गुण एहे प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एहे कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे दास दासन को दासरा नानक कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण पास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है करण हार जो कर रहा साई वडे आई गुर पूरे उपदेशिया सुख खसम रजाई चिंत अंदेशा गलत काज जन हुकम पछाता न बिन सह में छोड़ जाए न

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतह सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो इस कर कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करें संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नगर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर लिव लाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे। सुर पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा, अचरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

जम काल ब्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए

मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैथर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे जम से दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेग, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस्तीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे,

चीत करता करे काम को काटे, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे। अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर निरत। हमसे कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंधते नानक गुरकाद। बिलावल में अला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना भला बसिया प्रभ संग। रहाओ बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओ स्वरूप संतन कहें विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहरे दिल से कहें परमा, नानक किस प्रभ पेटिया जाके पूरन कर्मा। बिलावल महला पंजवा, जी जंत सो प्रसन्न भये देख प्रभ प्रताप, कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहर आप। खात खर्चत निभकर है गुर शब्द अकूट, पूरन पई समग्री कबहू नहीं टूट। रहाओ साध संग आराधना हर मुद अपार, कर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप समझ के रोग शीतल मन पया, गुरपुरा आरा गया सगला दुख गया, राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का गया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया नाम।

जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल में अला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याय किछ बिघन न लागे नानक नाम सलाही है पर दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिय मिल साथ समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे। राम नाम जो जन जपे हम जिन सब जागे पंत मंत नह जोई सिर चाख न लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग आनंद मगन रस

को कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे, जम कंकर नेड़ ना आवे, गुर सिख प्यारे, रहाओ, करण कारण समरथ है, किस दिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर, बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग ताते बहुत ना पाओ, बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुन गाओ, रहाओ, कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ, बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग सास, रहाओ, मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास, बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब कला।

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में पेट प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपनी हास रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

श्री कल भैरा के प्रभ आप नाम प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप बिलावल महला पंजवा तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम और नाथा प्रभ नित गया रविया नित राम साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाओ प्रगत भय संसार में फिरते तय नाम नानक के शरणागति कट कट सब जान बिलावल महला तनिमा रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत वद प्रताप अचरज रूप।

अरदास जानी तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई, राम नाम और सब दिया एक।

उगमताल जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोस्त हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांस फल दित्यन नानक बलिहारी।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख किस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

कर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तम के जात त्रिपत अघाए पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तय बिन से कहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वडियाई मगन पे ऊहा संग

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासियों राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस त्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारियो, पावक तने जरावत है, ऐसे गर में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केस गहे फेरावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यों पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वड़पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंदमय जब ते पेटू साथ दया रहा तब ते दुर्मत दूर पही रहा पूरन पूर रहो संपूरन शीतल सांप दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अंकारा तंते हुए सगल खई सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते ए मंत्र लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिनको सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वरन ना साके एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई क्या कथी है किस कथन न जाई जह जह देखा तहरिया समाई रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभु तू है सहाई शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु गुरु नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमक जताई है अचरज सुनियो प्रापक केतले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को किसकी लई लई सुन जाई है नानक शरण शरण सुख सागर मुहे टेक तेरो इकनाई है बिलावल महला पंजवा संत शरण संत टहल करी तंग बंद हर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहा सुख सहज हर कनो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बरन ना सातू गुर पूरे मेरी उल्ट तरी देखो मोहन सब कह संगे पूर्ण न काहू सगल परी पूरन पूर रहो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हूँ क्या कहता जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यों कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितव नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन सो बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काटे बहां फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पै स्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म

गुरपुरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सुमर सुमर सुमर सुमर।

महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभु नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापे आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पालिये हो निधान जन्म मरण की कटिया फांसी साची दर्गे का निशान जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहा, कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही, संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कै संगा रहा, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते कहरा जंगा, कभू न बिसरे हिए मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आगे, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकप सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताकी बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहा, जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ पाज लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहा, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चित

कहो नानक तुस प्रभ लिहारी, जिन जन का कीनो पूरन वाक। बिलावल महला पंजवां। पूरे गुर की पूरी सेव, आके आप वरते स्वामी, कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी, अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु,

सूरे हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे पारज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाए जन्म मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुटे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नाम शरण परयो दुख पंजन अंतर बाहर के खजूरे बिलावन महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर जी के संग बसे।

जन की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्फोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

दास अपने की आते राखी, तय पंजन ऊपर करते मान। तई मित्राई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर काडे छाण।

कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मेरे।

पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नीमया रहा मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर की।

नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

अनुक भगत अनक जन तारे सुमरहे अनक मुनि अंगले टिक निरतन तन पायो प्रभु नानक अनक।

तब रस मंगल गुण गावो, अनज रूप ते आवो, नानक द्वारे आयो तो मैं लाल पायो री। मोहन रूप दिखावे

आहे मन अवर न पावे चरनावे चरनावे उलझियो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक कह हर ला है अन से टूटी है रिक से छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मेला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत।

बिन तापय पदत न होई, शब्द रते सदा सुख होई। ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरुमुख पाव से रस रसमान रहाओ। ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कत कत बाद करे।

नाटशाला नाम विसार माया मद किया बिन गुर भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान गर्दव मंजारा पशु मलेच नीच चंडाला गुर के मोह फेरे तिन जोन पवाये बंधन बांधिया आये।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी। साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले।

आप तैं आप खाए हो में तैं अम दिन हर रस गीत गवैया। गुरुमुख परचय कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया छिन पल रह न सकूं बिन नामे।

गुरमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आप

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न पै।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाव पवै तित अय्या। दासन दास दास हुए रही है, जो जन राम भगत निज पहिया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन तृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द

रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई,

सुनैया सतगुरु दया करे प्रभु मेले मैं कुछ आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभु देखे बिन नींद न कहिया वैदक नाटके देख पुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया हौं खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभु केरी तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हौं तिस विटों बल बल कुम गैया

एको प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख पर मैया गुरु गुरु करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मया पिता ताए क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल।

नी पंच भूत दे ताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम पूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर कर सा

किसमें मनुआ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नौ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

मरे डागर मरे ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत कोए डर में कर कर में डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौथे थावे ले पावे राजस्तामस सतकाल समावे ससियर के कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

आप गवाये नानक नाम रखो उर्धार देवन हारे को जयकार वीर वार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए।

पाए, जम दरबांदा चोता खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए, सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे त्यै सोजी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेखे, कोई न मिटे तेरे लेखे, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर निशाने, सतगुर पे ते ता एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मार न साके कोए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मार न साके कोए, साहिब की सेवक रह शरणाई, आपे बख्शे देवड़ियाई, किसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे, डर किसका होए, गुरमति सांत वसे शरीर

नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ अदरया भरपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए, एको वर्तै अवर न कोए, मन रोस की जय जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी, किसी वार सब सब सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, किसी वार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चले सदा सच समाए, किसी वार ता जा सच राते, बिन नामे सब परमे काचे, मन मुख मरे मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लोबाए, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दे क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करे पेख तारी, पव पव पर मैं काची सारी, कैसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक कितनी वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, कितनी वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रे समाए, बिलावल मेला पहला संत दखनी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब चिंगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया, तन पाए पगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया, सच नवेल लड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग बासी, मैं पगत हर की पावे, अगाद बोध अकप कथिये, सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया, रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया, नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी पिर संकुती राम, गुर के पाए चलो साच संगूती राम, तन साच संगूती हर संगसूती, संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, सात सात निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक, नानका पौ पंजनो, ज्योत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा, आप मार मिलाइए, हो मैं ममता लोभ जालो, शब्द मैल चुकाइए, दर जाए दर्शन करी पाने, तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति, नानका उधारिया, बिलावल मेला पहला, मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब जत्तो हर नाथ नाथे, तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना, नानका सच गह रहे, पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर फूटड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी, अपने पिर पानिया, तज कूर कपट स्वभाव दूजा, चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे, साज शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे, नगर कर तुद पानिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम,
अकथ कहानी पद निर्वाणी को बिरला गुरमुख बूजे ओ शब्द समाये आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया ओ पूर रहा सर्व ठाई नानका उर्धारिया महल बुलाईडिये भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मा

जय त्रै लोक नाथ पछाणे मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं कान तकिया तेरो सास सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो संत बिरावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समान आराम गुर पुत्र है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रात राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम गुरमुख मिल सुहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर रात प्रभु नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम तगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जीन दे ज्यो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिरावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुरपुरे खा लिया नानक हर लिवलाग संत मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिवलागे राम अंतर कमल प्रगाशया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिवलाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुरपुरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मूर्ख मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम सलाए तू।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम, अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते, सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिए मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया, बिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर

बने अचरज जांगियां, मिल एकत्र होए सहज तोए, मन प्रीत उपजी मांगिया। मिल जोत ज्योति ओत पोती, हर नाम सब रस भोगो, बिनवंत नानक सब संत मेली, प्रभ कारण करण जोगो। पवन सुहावरा तर्क सबागी राम, प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम। गुर चरण लागी सहज जागी, सगल इच्छा पुनिया, मेरी आस पूरी संत तूरी, हर मिले कंत विछुनिया। आनंद अंगुल वजे वाजे, अहमत मन की त्यागी, बिनवंत नानक शरण स्वामी, संत संग लिव लागे। बिलावल मैला पंजवा, पाग सुलखना हर कंका मारा राम, अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम। आनंद अंदिन वजे वाजे, दिन श्रेय उमाहा, तह रोग सोग ना दुख दिया, तह जन्म मरण ना ताहा। रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत, भगत परे पंडारा, बिनवंत नानक बलिहार वंजा, पार ब्रह्म प्राण अधारा। सुन सकी सहेलड़ियो, मिल मंगल गावे राम, मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम। कर प्रेम रावे तिसे पावे, एक निमख पलक ना त्यागी है, गय कंठ लाई है नह लजाई है, चरण राज मन पागी है। पगत फगौरी पाए मोह है, अंत कथु न ताए, बिनवंत नानक मिल संग साजन, अमर पदवी पावे। दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम, कर गय पूजा गही कट जम की साफी राम। गय पूजा लीनी दास कीनी, अंकुर अदोक जनाया, मलन मोह विकार नाथे, दिवस निर्मल आया। दृष्ट तारी मन प्यारी, महा दुर्मत नासी, बिनवंत नानक पई निर्मल, प्रभ मिले अविनाशी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम, ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए। आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप पुगता, आप कारण किया, बिनवंत नानक।

ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाव दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जो

मुखो मैं चतुर सुग रस जान देती मोय निर्गुण गुण नहीं मैं रूप धूप ना नैन बंके जय पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पे सगल जा को करना पत धक्किन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो त्यों मोय रखो मोय मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोय तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित वो मित अंधारे जो आख चतुरी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसकना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण

सुंदर छांव दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तट लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गई दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल नह से वही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा त्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम, सिमर सिमर नारायण पय पारज रामी राम, गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस्त नेड़े अपने

हर उत्तम हर प्रभ गाव्या कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरेन गुण उचरे हर हर हर उरलिर लाग सब तन मन हरिया होया मन छिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन जान चराग जन नानक।

राग नाद सब सोने जान लागे सहस्यान राग नाद छोड़ हर सेविया तां दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुझ उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से रिया तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हठ कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन

जन्म मरण दुख कटी है, सच्चे रह समाए, सदा बिलावल आनंद है, जे चलने सतगुरु पाए, सत्संगति बह पाओ कर, सदा हर के गुण गाए, नानक से जन सोहने, जे गुरुमुख मेल मिलाए पौड़ी। सबना जिया विचार आप, सो भगता का मित हर, सब कोई हर कै वक्त, भगता कै आनंद कर, हर भगता का मेली सर्वत सौ, निशुल जन टंग तर, हर सबना का है खसम, सो भगत जन सिख कर, खुद अपर कोई न सके,

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। महला तीजा, सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी, सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए, जे वस्त मंगीए साई पाईए, जे नाम चित लाईए, गुहज गल गीसी कीचे सब गुरु पास ता सर्व सुख पाईए, गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए, जिस पूर्व होवे लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा, सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस्ती संकोच हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैव पकड़िया गुर कहते सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे, मानस के देवते पड़े सच्ची पदक जिस दे, हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी, गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यों बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा, रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए, हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंधले

हर कानाओ मन पाया, गुरुमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान प्रगासिया, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। महला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक छो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसा दूख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कमो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वस ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम से आया, दिखिया माए उदास है, हों में शब्द जलाया, आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य से लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण पुल्ले, हों में मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चुकलाया।

अवर न कोई गुरुमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खटे हो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिन को पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला चीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चों जाए।

नानक जो पावै सो होए पौड़ी। पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरै मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया। नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन। हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया, विक्षो रचै रचन। दुष्टा सेती तिरहड़ी, जंक्षो वाद करन। नानक साकत नरक में जम बजे।

किस सास गिरास सदा मन वसै, जम जोए ना सकै तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, हौं सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से तिस। कौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु तो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्तिया जगत में कट कट मुख पनिया, बहुत वडियाईया साहिब है ने जाई गनिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे जो बनिया। श्लोक पहला तीजा, अपना आप ना पछानई हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर, मन मुख जन्म गवाए।

राम गोविंद अंगुन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वट पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुर न मंकन पंग पौड़ी। कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुरु आवे पिछले गुने सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल रलावे जो मी उठे गलिया नालिया टोबिया का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन हो जावे ए वडियाई सतगुरु निर्वैर विच जित मिले तिसना पुख उतरे हर सांत तर आवे नानक ओ अचरज देखो।

सूदे सूदे रे चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव। बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जाइए रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीस बिलैया खइए रे, तनवंता अर निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाए न कभी।

बिलावल विद्या ना करो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखिए फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए इन मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरे बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर सब दिवचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यों को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील तरम जब पगत ना कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची ए काया ए मिथ्या का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोए साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ बिल सुर्त करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनिय सुजस तुम्हार मांगो काए रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय दियो नामा

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो थाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे कुरैन पात रहे जल समीर।

महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिरथी जाय रहा। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किस हाथ नहीं कहा करे ए बकुड़े इनका वाहया कछ न वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब चढ़ाई। जो कुछ आस

छिन में झूठ दिल सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए। गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याई है, जो छिन में किलित सब करे विनाशा। ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब पुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार, अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी।

आयु मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हुए ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुझ उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जाको तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बदना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिलना। जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मोहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर मैल पावे गुर बचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

रही है। सो ऐसा हर शेर सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है। ता मेरे मन कायत कड़ी है रहाओ। हर पर पंच किया सब करते है, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपुर है हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब

हर स्वाते आए तू तुद लय छड़े वौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन

परलो करता, व्यापत करता, अलिप्तो करता, वक्तो करता, बूजत करता, आवत करता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की म्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़ अवायले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जायले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुम्बायले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले, जैसे मीन रसन साध दिन से

आज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभु तज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुर ते सुजय निरंजन देव रहाओ। जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ तत पर लो निमख मझार। जा की गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा के आए। आए ना जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडार, सगल कटा देव है आधार। सतपुरुष जाको है नाव, मिटे कोट अग्निमुख जस गाओ। बाल सखाई पगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा, नाम संग सीनो व्यवहार। नामो ही इस मन का आधार, नामो ही किस कीनी ओट। नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम। मन का इष्ट गुरसंग ध्यान रहाओ। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात। नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो गीता। नामे दरगे

सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट गत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगप पै लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पौनस है, जाके कीरत निर्मल सार, जाके रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई। गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग। गौंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अभेयो, सर्व पूज चरण गुर सेयो। गुर

रमत राम सब रहे हो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम तन

बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तय पार उतारे सबते ऊंच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का मैल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट ले सात पत पोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभसार दिन पगति सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर से उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभु क्यों लागी सह समाद सांसनंतर एको स्वामी सगल कटा का

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा, गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस संते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल।

सुवाओ पद अभिमान जान प्रभ संग साग प्रसाद हर्षो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल हो।

सर कोई ना है, कट कट अंतर सर्व समा है। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पति पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत।

तो कोई ना सके जम काल, जग में आया सो परवान, गुरुमुख अपना खत्म पछान, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा

का सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ मां विचार पंच दूते मंत कौ शरणाई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ।

तारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ नाम

बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौन मैला पंजवा, जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है, साध संग जपे निरंकार निंदक कै मोह लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिसको होत नाहे, जो जो गर्भ करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण

पार अपने दास रखे कृपा तार। नानक के प्रभ प्राण आधार गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला।

सब लोग संतन के मन महा आनंद संत जपे गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पाए सगल स्थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाए पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए सगल पै मिटे जा की शरण निंदक मार पाए सब तरन जन की निंदा करे न कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पैर जन एक से आए जमुआ ता के निकट न जाए जन निर्वैर निंदक अहंकारी जन पल माने निंदक बेकारी गुर कै सुख सतगुरु त्याया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ थर पर जाए नितरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा राखो जन तेरी कहो नानक तिस गुरु बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी राग गौंड बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चख मारी बोलत बोलत बढ़े विकारा बिन बोले क्या करें बिचारा कहो कबीर छूछा कट बोले करया होए सो कब होना डोले गौंड नरु मरे नर कामना।

कहो कबीर तब ही नर जागे, यम का दंड मूंड में लागे। गौंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए ले।

पंच तत् मिलकाया कीने, तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे, हर में तन है तन में हर है, सर्व निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे।

को दीना, कुंचर पोत ले ले नमस्कार है, बूजी नहीं काजी अंधियार है, तीन बार पतिया पर लीना। मन कठोर अजहूना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देव, ना एहु जति कहा वैसे हो, ना एहु जोगी ना अवधूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत ना को पाई रहाओ। ना एहु गिरही ना उदासी, ना एहु राज ना तीख मंगासी, ना इस पिंड ना रक्तूराती, ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती, ना एहु तपा कहा वे शेख, ना एहु जीव ना मरता देख, इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सोई पत सोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया, कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल, एहो मुंडिया सगलो दब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ। सुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहाँ का मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंदिन तापे जाहे, एक दो मंदर एक दो बात, हमको साथर उनको खात, मूड पलोस कमर बद पोची, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़क की टेक, सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार न रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इहा भोग विलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी राव, सुहागन गल सोहे हार, संत को बिख बिखे संसार, कर सीगार बह पकियारी, संत की ठिठकी फिरे बिचारी, संत पाग ओ पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की ओ पिंड परायण, हमको दिष्ट परे त्रकडायण, हम तिस का बोझ।

राम ना चेत है, तन मन रमत रहे मैं चेत है रहाओ। जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाई है, साधु बिन कैसे अवगत जाई है। जैसे माता पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई, कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार राव। नाचन सोए जो मन से नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जप

छोड़े अन्न करें पाखंड, ना सोहागन ना ओरंड, जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौण बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। असुमेध जग ने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तो न पुजे हर कीर्तनामा, अपने रामे पजरे मन आलसिया, रहाओ गया पिंड परता, बनारस अकबस्ता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अच्छता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सेवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं, पजनामा तरस पर सिद्धं, गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वहां को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो, रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा, जो बिखई हे

और फिर तक अलख लिखाया, जैसे दिखे हित परहारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे पाप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। राग गौंड बाणी नाम दियो जी की कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम ले उत्तम कर्मा। हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंगले की लाकरी। हरे नमस्ते हरे नमे, हर हर करत नहीं दुख जमे। रहाओ हर हर नाकस हरे प्राण, अजय मल की ओ बैकुंठे थान। सुआ प्रावत गन का तरी, सो हर नैनो की पूतरी। हर हर करत पूतना तरी, बाल कातनी कपटे परी। सिमरन द्रौपद सुत उदरी, गौतम सती सुला निस्तरी। केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया। प्रण वे नाम ऐसो हरी, जास जपत पै अकदा तरी।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, प्रण में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझा।

लांगत लांगत जाती थी। पांडव तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के कारखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा राम

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक नीश।

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड। जे ओ अषट तीरथ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना अभी कभी किछु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक।

कहे नर हरि। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जा पीतर कब पीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार कहे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे मेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तैरिया समाए। अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। किन बिद सागर तरिए, जीवतियां नह मरिए रहाओ। दुख दरवाजा रो रखवाला।

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरी है जीवतियां क्यों मरी है, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोग सुने, पपचोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार न लागे रहाओ, पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे, सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा तामन सेव करे,

छिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे न डोले, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरह सगले कुल पारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, ओनस सुन समाज समावे, रहाओ पिछया पाए पगत पे चले, होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

ਤੇ ਪਾਏ ਤਨਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ।

प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सैकिया गल्ला दर किया बाता, कहता कहन कहाया, राम कली मेला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कौन बुझे दिख जाने, खुद खुद चलत आप कर चीने, आपे तक पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, किसते मुक्त परमगत होई रहाओ, जिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गतमित और न जाने, गुरबिन समझ न होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में त्यान त्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला, जहाँ हर प्रभु कृपा तारी, ताहों में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी विचारी, सो हर जन हर प्रभु पावे, एन भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे, रहाओ, तुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुरपूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाग देद गुरबानी, मन राता सारंग पानी, तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, छादन पोजन मांगत पागे, खुदया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी।

दिया दिहतारी, राम कला निभ पथ सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी, उगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी, सहज जगोता बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वडे।

जन मिलदियां तुल न लाई है, हर जन अमृत कुंट सरणी के वड पागी तित न लाई है। राम मोको हर जन कारे लाये, हौ पानी पखा पीसो संत आ गए, पग मल मल तूर मुख लाये रहाओ। हर जन वडे वडे वड ऊंचे, जो सतगुर मेल मिलाई है, सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख ते आई है। सतगुर शरण परे तिन पाया, ये ठाकुर लाज रखाई है। इस अपने स्वाये आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाज लगाई है। बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाई है। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराई है। राम करी महला चौथा। सतगुरु दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम में हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे इच्छुन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा। सतगुरु दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उधारे। जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन वड पाग हमारे, रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावे। ताका अंत न पावे पारे, हृदय काम काम नी मांगे। रिद मांगे हाथ पसारे, हर जस जप जप वडा वडेरा। गुरमुख रखो उरदारे, जे वड पाग होवे ता जपिए। हर पौजल पार उतारे, हर जन निकट विकट हर जन है। हर रास है कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभु। हम बारिक हर प्रत पारे, राग राम।

मेरे मन सतगुरु सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम तैसी कृत कमाई। मन तन साथ

पंथ छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निड पावो, इन विद तत्व बिलोई, परम चुकावो, गुरमुख लिवलावो।

सहज मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरपुरा पाया तो उतरी सगल बेगनी ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का ता निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस अगोचर

पूरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

गुरु गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुरु गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुरु गोसाई, राव दूजा राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले गीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। राम करी महला पंजवा सेवक।

आज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूर सतगुर रहाओ महिमा जा की जहर गंभीर होए निहाल दे जिस तीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले पर्या सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप दयाल।

जो कुछ करे सो मन मेरा ही था ता उ अचरज नैनो दीठा अब मोहे जानी रे मेरी दही बलाए बुझ गई कृष्ण निवारी ममता गुरपुर लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना गुर पकराए हर

पीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाय होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन तीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक बरन।

संत जनी परदास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सापत इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे तेहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस

माद अनहद बाज अचरज विस्माद केल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे ते रोग सोग नहीं।

धारे नीचल आसन बेसुमार डिगना डोले कतहु जावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे परम पे मोह न माया जाले सुन समाद प्रभु कृपाल ताका अंत न पारावारे आपे गुप्त।

तेरे मन आस, संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मुहे कबू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास, गैर गम

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना दुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमर

कर पर थापे वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर पगतन को ना

कन्या जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते क्यों का ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का संग भया।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

मन अटल ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होई निर्मल जियो। सोधत सोधत सोध बिचारा बिन

नानक ते जन उत्तम भाई। राम करी महला पंजवा। गौ कर पकरी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ। कहो नानक जो त्याग दई, तब ओ चरणी आए पई। सुन संतो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई। गुरपूरा पेटत उधार। राव।

लाग सतसंगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्तु तू आप।

उठाओ सदा आनंद न होवी सोग कभू ना व्यापे हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा परम गत पावे हर सिमर प्राणी।

परमेश्वर स्वामी कट कट दाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

नानक करम प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलब देह सवारे जाहे न दरगे हारे हालत पलत तुद होए वड़ाई अंत की बेला ले चढ़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत हो है दो वै सुहेले अचरज।

बूढ़त लो साध संग तर नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपुरे यो दीनो मंत मिटे सगल पै

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया आनंद हर रूप।

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

बैसंतर पाग माटी को जल भेद त्याग ऊपर चरण तले आकाश काट में सिंध कियो परगास ऐसा सम्राट हर जियो आप निमख ना बिसरे।

नाम जपत परम सुख पाये, आवागौन मिटे मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

वर्त कपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

जय चारस पवन सिंहासन पी जय न्योली कर्म खट कर्म करी जय राम नाम बिन बिरथा सास ली जय अंतर पंच अगन क्यों ती

जिन जपिया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर।

हृदय नाम ना सर्वदया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आज पुरख अपरम परसो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

कैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका के सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक से दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मली कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी छिन्नी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी।

कारी सब द्रवे आसन कर आजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

कर पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन

जे कुटंब छोड़ पर पवन करें, गृह शरीर में हर हर नाम गुरु प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा।

भगत खजाना गुरुमुख जाता सत गुरु बूझ बुझाए संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाए आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सत संगत में नाम निर्मोलक वड़े भाग पाया जाए परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई शिव नगरी में आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाई तातुर बाजी शब्द निवारे नाम वसे मन आई त्यो शरीर सर्वर है संतो स्नान करे लिवलाई नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई।

नाम नमन निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चित अदुष्ट लगाई।

बुझाई नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाई राम कली मैला तीजा हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कछु न जाय संतो गुरुमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कराए गुरु सब दी थाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप ना पछाणे संतो कूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया कट अंतर।

एक पेश करें फिरे अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन भगत करें दिन राती, राम नाम उधारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन भगत न हुई कभी।

सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जय मिलिए राम मुरारी अंगिन जागत।

जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा। वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्वथा।

किन्हि मोन अवतूत सदाया, कोई कहतो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सल करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वड्या।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग सो दे, बिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो सा

ठाकर को रख लियो चीता। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिष ठाकर की रहो।

इस सेवक मन आलस करे जिस विसरे इस निमख ना करे हम अपराधी निर्गुनिया रे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वड पागी मिलिया नानक दास संग पातर करया राम कली मैला पंजवा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत काहू बिहावे राज मिलख व पार।

जो पावक संग सीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपते सब परम पौत होत। जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे मैं अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तय टूटे गुरु प्रसाद, नानक देखो सब समाद। राम करी मैला पंजवा, जी जंत सब देखते हैं।

अनेक बार कोट जन ऊपर नानक वंजय वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी इकोंकार सतगुर प्रसाद दर्शन तेतक पाप सब नासे हर सो देह मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत पूर मुख लाए।

चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिछिया ते का दियो सात शब्द बन आई जन्म मरण का सहसा चूका बहुर कतो न धाई नाम रसायन इहो मन राता अमृत की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया नहीं चल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न

काला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कट आवे कट जाई संतो आज जुगादी है भी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब थाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम करी मेला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चिताई।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

वाजे पंच सबत कर सवा गए शब्द वाजे कला दुत कर तारिया पंच दूत तुद वस्ती ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जन कौ से नाम हर कह लागे कहो नाम कैस को हुआ तुत कर अनहद वाजे।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जन सब खेल तेरा क्या को आस वखाने, आखें पा वेखे सब तू है जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा की सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुझ उपाय एक वेख प्रसन्न आया। लब लोग

अहंकार चूका सतगुरु पल्ला पाया। कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर के पाया। पगता की चाल निराली चाला निराली पगता तेरी विक्रम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नानी बोलना। खमियो तिथि वालों ने की एक मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समा

सब सोहला सतगुरु सुनाया। पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी प्याया। पवित्र माता पिता उत्तम सहत।

कर्म कमाए। कैसे जियो मलिन है तुझ संगम तोता जाए, मन तो वो सब लागो हर्षो रहो चित लाए। कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले कुन्नी जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो।

कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेव की सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय प्याए अंतर आत्मे समाले, आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोए। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जो को गुर के बेमुख होवे।

जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरुमुख सदा समालिए कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए। हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मनवन जारा हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत किते जिच्चे हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न कुछ ना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विकता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम।

जग में आए क्या क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा, हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाना गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो, सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल।

0: गुर जाए हर प्रभ पास जियो।
1: सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

सतगुरु परतख होंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सद्यो

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया,

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

तखत निवासी सचित सैदी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला सोए लड़ा प्रभ सोए लड़ा अनहद तुनिए सोए लड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याय सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिए।

इन ना विसारिय राम रामा राम रामा कंठ उर्धारिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रया इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

प्रभ रख को अंचल ता कै लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो।

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध ग्रह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रय रंग जागे नै छिद्र लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर।

बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब मिल।

आए हरकंत जियो। ग्रहलाल आए मनते आए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छपुनी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया। हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक। संत सहाई जी के पव जल तारण हार सब।

हर जप उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मनते बिसरे

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ ससै सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन लै माणक मोती, समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै, अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया, आपे गुरमुख आपे देवे, आपे अमृत पियाया, एको एक कहे सब कोई हौ मैं।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर।

सह सोताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई और क्या कही है किछ कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुरु दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरण मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछानिया।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख

चार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दै दिस टूंड करे मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तुलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजै देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

दिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरिए, गुर प्रसादी आपो चीने जीवतिया इव मरिए। माया माया कर मोए माया किसे न साथ, हंस चले उठ डुमणो माया पूली आत, मन चूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन में मन उल्टो मरे

गुर प्रसादी हर पाये मत को परम कुलाहे सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखचार साउ सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर सचियारी सच संचिया।

सरत्याय संपै पूर्व लिखे की पाय संपै कारण चातर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाये।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द ना चीने सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे।

साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ। नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेओ। क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन स्वाओ। साच कहो अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुर पाए, सहजे आए हुकम सिधाए, नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए, गुरमुख बूझे आप पछाने, सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाए पारो, चरपट बोले औ

रूख बिरख उद्याने कंद मूल आहारो खाये। औदू बोले ज्ञाने तीरथ नाये सुख फल पाये मैल न लागे काई। गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिदसाई। हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई। बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई। हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो। खंडत निद्रा अलप आहारं नानक तत् विचारो। दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा। बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा। इन विद मन समझाये पुरखा बाहुर चोट न खाये। नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी। काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी।

सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते इहो मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर।

पाए। आद को विस्माद विचार कथियले, सुन निरंतर वास लिया, अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले, कट कट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाये, तत् निरंजन सहज लहे, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिख सो खोज लहे, हुकम विस्माद हुकम पछाने, जी जुगत सच जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कही है सोई, अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाये लिया, एक एको सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी

कट कट पेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत बिदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मार्यो एह रावण पेद बपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख सायर पाहन तारे गुरमुख कोट तेती सुधारे गुरमुख चूके आवन जान गुरमुख दरगे पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहत्यान गुरमुख दरगे सिफत समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख होम में शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचे रह समाए गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथा ले रहो निराले बोले नानक सुनो तुम बाले एक कथा का दे विचार पव जल शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुरु मत

तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग मसुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विदाता, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रते से कैसे।

नानक पार परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल

मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विचों खोवे, तो नानक सहज समावे, इव मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण वह, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन जोत तो शब्द लहे, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहे, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हू न जावे, जा इहो हिरदा दे न होती, तो मन कैठे रहता, ना भी कमल अस्तंभ न हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप न हो तो रेख न काई, ता शब्द कहा लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी

त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण पेख असरूप सो एको, एको शब्द विडाणी, साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी। कित कित विद जग उपजय पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई, हो मैं विच जग उपजय पुरखा, नाम विसरे।

मार, गुरमुख मन जीता हूँ मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार विदार, गुरमुख दरगे ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द

को लपटाए। नानक पूरब लिखिया कमावना, अवर ना करना जाए महला तीजा। सतगुरु मिले सदा सुख, जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया, जह देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया, बैसन को जाई। सब किछ आपे आप है, गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन, कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने, पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आप, गुर शब्द से आई। वाहो वाहो सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया, आप पिसाए पिसाए कैसे बात।

परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल सो सब सांत न दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्या।

तिसका पूजन नानका, विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाथियन जे पर कर पूजन करे, उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ, सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता सिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

चार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार। पौड़ी तुझ जे वरदाता नाए किस आस सुनाये गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाये रख तत सादा बाहरा सकी वड़ियाये जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मिलाये कप अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसे प्याई।

डोबेन नानक जित ओए लाए चित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती इक पूर्क सत लायन मनमुख विगूति गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोते पुन है तिन वापस पीती नानक नाम से आई है सच सिफत सनाई श्लोक महला पहला सती पाप।

न कोए, सचो सच वखाणे कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई, श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंड मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब दरवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिरही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औहठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास,

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता। मन मुखार मंदर की सार न जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब में एक वरदा।

0: कडवही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आय तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नान का ओड़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगति रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किछ हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान दे इंद्र रो आया परशुराम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछा खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

जाए। जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उचरे गुण माए समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलनी गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई श्लोक महला दूजा। अंधे कह राहे दसे अंधा होए सुजाए होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एना आखियन जिन

है कोई जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गर कोट है सब दिसंतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा।

बलेद हल हले मी हाली चित चेता वत्तर वक्त संजोग नाव बीज बसीस बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तत कढोले अंतर प्रगास कट चानना हर लद्दा तोले आपके परम पुलाइंदा किसके न जाई श्लोक महला दूजा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

सब किछ कर ही माए है बड़ पागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंगाया कट गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पाड़े, सुई तागा सीवे, क्यों पत पाती सिक्ति।

मत सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्याइन से सच्चे जिन हर खर तन पल्ले। भगत सोन गुण गाव दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस है आए पौड़ी। आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन। एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन। नानक नाम से आई है।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजो।

तिसै मिलै संत खाक, मस्तक जिसै पाग। श्लोक महला पंजवा, हरनाथी को सच वैन सुनाई, जो तो कर

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जन, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

सतगुरु सरवर रत्नी पर पूरे जिसनों प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुरु के हुक्म आवे रतन पदार्थ मानक सरवरे।

अंदर मोह नित परम व्याप्या तिष्ठस नाही देहा कूड़ी आवे कूड़ी जावे माया की नित जोहा सच कह ता छोहो आवे अंतर बहुता रोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूड़ा मन लागा तिस मोहा ठग ऐसे ठग रल आया साथ दे इको जेहा सत गुर सरा।

आपके वैद आप नारायण हैं। यह वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण है। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा हुक्म।

कितना पौड़ी, जिस तय मस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

तुद कर मान महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा छतरे बाजार सोहन विच व्यापारिये वखर हिक अपार।

जीवदय देगुना सत पैन पराव है पारंगत दान परीव दे नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दे लेने करे उन छत सिर कर सिस्ती अमृत पीव दे।

मुख उजले मन मुक्ति प्राली पै कबूल खसम नाले जा काल मर्दी काली माता की भी सो सोए।

तीर्थ बर्त नियम सुख संयम रव सस गहने दियोरे सुरत प्याल सुधा रस अमृत उहो महारस प्योरे निजर धार चुए अत निर्मले

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पन

आगे जी मुख वेद गायत्री निपसैसो क्यों ब्राह्मण विसर करे जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ कर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम कह उबरे।

अंतर जोत राम परदासा गुरमुख बिरले जानी राव पावर एक पोप रस बीदा बारे ले उर्धरिया सोरे मजे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया करती जड़हर सोखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन इहो बिरवा देखिया मुंदरा मून दया कर चोली पत्र का करो विचार रे।

रह निरालम तारी कहत कबीर सुनो रे संतो कर्म दया कर बारी। कवन काज सीजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमक ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे जिहि कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा लंपत चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

अंदर सोवे पटम बरतान सेज सुखाली बिगसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये एहो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात

बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नप सिख यो मन कीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा।

सूर गिरासा जब कुंभक पर पुरलीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया सुनते सुन मन बसाया।

हर बेदार जागत मुसीहत हौरे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल सेबर पाका मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जीव जंत ना सतावोगो।

माया, खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु हुए लखाया, राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अगन दह काया कल्प की जय, अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दीजय। राम नाम सर तौ न पूजय मने न की जय रोष जमे न दीजय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन लीजय जसरथ राय नंद राजा मेरा। रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पीजय।

सार सतगुरु प्रसाद इला पिंगुला और सुखमना तीन बसें एक थाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तुथाई संतो

तें बाजे शब्द अनाहद बाणी तें चंद ना सूरज पौन ना पानी साथी जागी गुरमुख जानी उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे अमृत रस गगनंतर बीजे इस कला जो जाने पे हो ए तैतास परम गुरुदेव दशम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे सो कभू न सोवे तीन त्रिलोक समाज पलोवे बीज मंत्र लय हृदय रहे मनुआ उल्ट सुन में गए जागत रहे न

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाल खरे।

मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में एक खिन पल दूर करे, वडपागी हर नाम त्यावे, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे,

हम जन के बल बलले पुरुषोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस्तमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिरसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभु ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण।

मिल सल लय सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारिक कौरिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर किरपणे।

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण मेला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

हर पज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होए पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अग

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अकमीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध विसारे गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम संवारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे।

क्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लैकू

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनू मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गनक उधारे परस ना परस।

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदे पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे।

कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लुचे प्रभु जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वर्त है कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा

सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुरु अलख लखारे। नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरया रिद अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुरु गुर निस्तारे। पवन सूत सब नीका करया सतगुरु शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंदा हम निकीरे नाम के कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन कीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगमा पा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया।

हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया गुरु मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सर

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब के निमित पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली किया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दर्गे बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालियें, जो लोन जलें गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो प्रमतो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पय शांति आई, हर उर्धारयो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर कापे, दंड कर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे सवागा, हर चारे ओर

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जान हूँ हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल बिख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पूख तिखाट। छक्का पहला माली गौड़ा में।

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मिटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचत।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे किरखें बरस मेघ, जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तरे।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा के कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जा के दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वे उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। एक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखम ते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वचल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा ना।

बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे। प्रणवे नामा पहने कामा कोठा कुर को दासा रे।

0: अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक
1: साजन तेरे चरण की होए रहा सद्दूर नानक शरण तुहारी आर
0: देखो सदा हजूर। शब्द
1: पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े
0: जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई मिल माया सुरत गवाई। मूरख मन काहे करसे माना उठ चलना खसमै पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रह न कोई किछ खा जाय किछ तर जाये जे बाहुर दुनिया आये सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखा।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

पछताने। तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। पंडित नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना।

हवर पला संसार मारू महला पहला। इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार है रहाओ। ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे ना इस तन को मिले।

पंत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यो जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जय। मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। पंत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यो अमृत पी जय। मीन की चपल स्यो जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पे खारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्मायल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला कर पंजा।

जियो जिसनु साचा शक्ति लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र हैं थावा बाबा देह बसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किछ आपस ते जानिया ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का होआ वरते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे विनाशी ज्योतिष पाणा सो सतकर मानिया काटी जम की फांसी पणत नानक लेखा मांगे कवना जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याय तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नावों पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वडपागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाए रहाओ ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो ना थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर व्यापिया जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न ना चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सा लाही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू

हर हर नाम निधान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए जिथे अवकट गलिया पीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा में हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुख बंद पो मैं हर बिन अवर नमाए रहाओ मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जम्मे आवे जाए ओए जम दर बद्दे मारिये हर दरगे मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेल आए मारू मेला चौथा हौं पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास हौं तिस विटो खन खनिये मैं मेले हर प्रभ पास मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मन मुख भाग विहूणिया तिख मोहिया कंदी पास गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार है।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ, हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छुड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई।

जियो जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो हौ अंदिन नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखत्रा सिर ऊपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र विचारा एका निरपव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू मैला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखें

आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमेयो बहु पांते अनेक जतन करता।

ए बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्यागो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

सहज आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल ठाकुर सेवक कहो सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया।

निरपौ पए सगल पै खोए, गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का, रैन दिन सुलिवलाई, मारू मैला पंजवा। जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबू न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने, बैरी संग रंग रस रचिया।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारयो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दब तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

छूट परे गुर कर ही माए दिखाया था। अनपो अचरज रूप प्रपेखिया मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी अखुट पंडार समाया था।

ताऊ लागा गोविंद सिंह काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबू जाए, पाया अमोल पदार्थ छोड़ न कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने कयो परगा।

क्या मेरे सतगुरु से मर जन में गावारा, मेरे सतगुरु ही पत रास चीत आवे तब ही पत पूरी, विसरत रलिए खाक रहाओ, रूप रंग खुशियां मन पोगण, केते छिद्र विकारा, हर का नाम निधा।

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बले।

एकै सुख ने दाम न छड़ै, राज कमाए करी जिन फैली, ताकै संग न चंचल चलिया, एकै प्राण पिंद ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत मीत प्राप्त गोजी, ताकै निकट न हो।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसे जीता के, साध संग पै जन्म के, गत पाई नानक नगर नहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते देखा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रतपारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो उदारो, करण पला मिटे बिल्लाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा, साध संग बिरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठमूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना

नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पसत उधारन तारन बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो, राव अवगत सो मानिया मानो, गुरमुख तत् ज्ञानो तिरखत सगल त्यानो, तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गुमान और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपुरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ बिना पे मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तक ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने। मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे। राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक। तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा। पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार। मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षो अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार। गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभू न हार। मारू मैला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसे प्राप्त नाम।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न से।

सोड सगले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ।

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, पूरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया, खत्म विसार दुनी चितलाया, आवे जाए पुवाये जोनी, रहन न किती खाए बया। मेरवा रख लयन आपे, जी जंग सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो परवान थिया।

मरो प्रदान है कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण अदा।

है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे इस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड कुटुंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे दिन गुर सब दिन आप पछाने दिन हर नाम ना काल टरे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कप कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटे जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुरबाद जीवन होर मरना दिन गुर सब दे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर कर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगन मुठड़ी दिन फिर चूर मराओ, तेरे फिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास, लेख निहाली पटकी कापुर अंग बनाए, फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

संहार, गुरमुख बूझे जानिए हो मैं गर्भ निवार। तो पावन तो जहिया कितिया, नानक नाहो ना विछड़े तिन सच्चै रतड़िया। मारू मैला पैला ना पैना पर जाइया, ना से ससुड़िया सच्चा साथ ना टुटे गुर मेले सहिया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ, गुर बिन एता पव तकी गुर तिर मेलम दितम मिलाए रहाओ। फुफी नानी मासिया देर जिठानड़िया, आवन मंजन ना रहन पूर परे पहिया। मामे ते मामानिया पायर बाप ना माओ।

सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सके सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुती लिस दे हो पत्तन कूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एक जोत दोए नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाये, बिन सतगुर पल्ले ना पाए, सतगुर कह पाने मन।

ताने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचों

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नाम है को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत

बीजा अष्टपदिया इकोंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहै ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचै नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा।

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर ने व्यापैखने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विदति से प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुम रे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई अवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्ये हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहू व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पा

बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने, कट कट राम हियालिए। संसार में सहसा व्यापे, अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे, ओ बालक वांगी पालिए। छोड़ बह तो छूटे नाहीं, जो संचे तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे, तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औद विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पैया बेबा, माल जोबन तन चोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे, जिनकी तात से ना जानी, अंदा ता दुख सह प्राणिया। खालक थावो पुल्ला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा, सिदक सबूरी संत ना मिलियो, वत्ते आपन पानिया। मौला खेल करे सब आपे, एक कड्डे एक लहर व्यापे, ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया। मेर करे ता खसम तिराई, संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखानिया।

आप उपाय पतिना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गौ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे पोगी, आपे रसिया परम।

पारे सतगुर बूझ बुझाए है, शब्द बुझाए सतगुर पूरा, सर्व कला साचे पर पूरा, अफरियो वे परवाओ सदा तू, ना तिल ना तमाई है, काल विकाल पै दे माने, शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माए समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है, मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझे त्रिभुवन सूझे, मनसा मार मने क्यों लूझे। जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा बिकट बिकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पौ जाई है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांति पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

पूंजी साथ सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखो लिवलाई है, मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, दिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले परकारे, मन मुख तक के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ बढ़ाई है, काम क्रोध अंकार निवारे, सत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यो लूजे, मन सामने है समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देखे, दुख दर्द शरीरों जाई है, निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया, सच्चे ऊपर

सच नाम सच्ची वड्याई साच तख्त वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साच हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे ना दर

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात इस पाना सह समाए, त्रिभुवन ज्योत करी पर।

साचे की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगह पैदे, गुरमुख सुरत।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही। मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है। वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच कमावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा। गुर संगत ए बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, पुस्तक करें पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे। संगत कुल तारे साथ परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रहे भगत लिवलाई है, बूझो हर जन सतगुर बाणी। यह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी। हर जप जप हृदय त्याई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाड़ा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं। दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पराई। पर पर दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो। आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरियाई। हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो। क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिखतेला। तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर दे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करनंदर, विघ्न नाही गुरमुख तरतारी, त्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड

गर्भ कुंडल में उर्दते आनी, आपे जाने अंतर जामी। सास सास सच नाम समाले, अंतर उधर मजारा है। चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा।

काली हुफुन तौले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन सीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे, बिन अब पगति बाद मरीजे, सर अफसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किसी ही मंदा आँख न चले, सच खरा सच आ रहा है, साच बिना दर्श जय न कोई, साच शब्द

कह जय पत होई, आपे बख्श लए तिस पावे, हों मैं गर्भ निवारा है। गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगे जुगंतर की बिद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सत तारे तारण हारा है। मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल संभाले, सो अंतर दाना बीना है। गुर सरवर हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है। हर अगम अगाओ अगाद निराला, हर अंत न पाये गुरु गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंग लीना है। सतगुर बाजो मुक्त किने ही, ओ आद जुगादी राम सने ही, दरगह मुक्त करे कर कृपा, बक्से अवगुण की नाहे। सतगुरु दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रस पाए, जम जागात नाही कर लागे।

क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जै तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, हम दिन कीर्तन की ना है, कूड़ छोड़ साचे को तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर केवा पारी विरले, लैलाहा सौदा की ना है, हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की ना है, प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

कुदरत तू सिर से दाता सब तेरो कारण की ना है। एक दर सेवे दर्द बजाए कोई दरगे पैदे सतगुरु छाए हो मैं बंधन सतगुर तोड़े चित चंचल चलन न दीना है सतगुर मिलो।

उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख न मिटे, जमदर अंध खुआ।

नरक पते अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी ली जाए दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूड़ कमावे।

जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पर पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतारा।

थाकत माया को बहुतावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कहीं है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे।

आए नानक हर जप हर मन मेरे हर मेले मिलन हारा है मारू मैला पहला कर रहो रे मन मुग्ध याने राम जपो अंतर्गत प्याने लालच छोड़ रचो अपरंपर क्यों पावो मुक्त द्वारा है जिस बिसरे जम जोहन लागे सब सुख जाहे दुखां फुन आ गए राम नाम जप गुरमुख जीड़े एहो परम तत्व विचारा है हर हर नाम जपो रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा एनस राम रहो रंग राते एहो जप तप संजम सारा है राम नाम गुरबचनी बोलो संत सभा में ए रस कोलो गुरमत खोज लहो कर अपना बौड़ना गर्भ मजारा है सच तीरथ नावो हर गुण गावो तत विचारो हर लिवलावो अंतकाल जम जोहे न साके हर बोलो राम प्यारा है सत गुर पुरख दाता वरदाना जिस अंतर साच सो शब्द समाना जिसको सतगुर मेल मिलाए तिस चूका जम पै पारा है पंच तत् मिल काया कीनी किसमें राम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाये शब्द विचारा है सत संतोख रहो जन पाई खिमा गहो सतगुर शरणाई आत्म चीन पर आत्म चीनो गुर संगत क्यो निस्तारा है साकत पूर कपट महते का हैनत निंदा करें अनेका बिन सिमरन आवे फुन जावे गर्भ जोनी नरक मजारा है साकत जम की कान न चूके जम का दंड न कबू मुके बाकी तर्म राय की लीजे सिर अफरियो पार असारा है बिन गुर साकत कहो को तरिया हो मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार न पावे कोई हर जपिये पार उतारा है गुर की दात न मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवे मन सो प्रभ अपर अपारा है गुर ते पूले आवो जावो जन्म मरो फुन पाप कमावो साकत मूर अचेत न चेते दुख लागे ता राम पुकारा है सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी।

चाले बिखला दे चार बिकार आहे। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अप

तुम्हारी ही। तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई। तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करें प्रतपाला। खट खट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे। सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन। सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे। तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खे

निराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिव राता है, अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा, तिन में पंच तत् करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पीजे शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक टिकी जय, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करे बेताले, शब्द सुरत बिन आवे जावे, पत कोई आवत जाता है, कूड़ कलर तन पत में टेरी, बिन नावे कैसी पत तेरी, बांदे मुक्त नाही जुग चारे, जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांदे

राम नाम बिन मुक्त न सूझे, आज काल पच जाता है। सतगुरु बाजना बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई। राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलल सलल मिलाता है। फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए। जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है। गुर की भगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जाने। सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन। एनत निर्मल ज्योत सबाई, कट दीपक गुरमुख जाता है। भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन डीठा। दर्शन देख मिले बैरागी, मन मन सामार समाता है। सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे। जिन कर चक्र करे विचारे, आपे करता कर

सत न पाए सच सूचे सच रहा है। सब साला है सुन सुन आख है आपे दाना सच पराख है। जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब सलाहा है। सुन सुन आख है कीर्ति बाणी सुन कही है को अंत न जाने। जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे ते सर पर मरना कृत पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते

कर जिस तन पल्लै शब्द सचै ओ महा है। काती सौदी तोता आवे गुरुमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। कोड़ न कथने सिफ सजाई।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मेला पहला दखनी काया नगर नगर घर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस्त समाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर सब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर सापे हुक्म रजाई दसने पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इकवासा आपे की तो खेल तमाशा बल्दी जल निवरे कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर्क उपाय तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पौने खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएंदा पंखी पंच उदर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद ऋण चुनकार सदा तुन निरपो कह करवाएदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ साजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा। जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएगा, मारू महला पहला दर्शन।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाय पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ गिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सचियारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किरे न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, कुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती, मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला, अरबद नरबद तुंदू कारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओ पत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला, दोजक पेत नहीं खै काला, नरक सुरग नहीं।

भंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जमदार न मारे फेटे, ज्यो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्त है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा सुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाय दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे मैं राजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा। कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ट उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो जोत कुमारी, सुनने कला रहाएदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा। सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन न पाएदा। सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा। सुनो तरत आकाश उपाए, जिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा। सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएदा। सुनो रात दिन सदोए किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा। साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा। सुनो सपत पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा। राज तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौ

गुरमुख समझाए रोग न होई। हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा। पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा। इस मन माया को निहु कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत।

किया, आत्म राम पाए सुख किया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आए।

दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरख सुजाना।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सत्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथे देखे अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कह कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम

हर रस पाया नित दामन जो चमक चंदायन देखे एनस ज्योत निरंतर देखे आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुर देखाया सतगुर मिलो आपे प्रवतारे सब कर सूर दीपक गहनारे देख अदित रहो लिव लागी सब त्रिभुवन ब्रह्म सवाया अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए अनपौ पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दी जय हर जपिए अंत न पाया अंतर नाम प्राप्त।

पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुरु शब्द निरंजन पाया निरपौ सो सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुरु जाने सो निरपौ गुरु शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वस्या एनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बार सो प्रभु जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिहु लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाया हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वरते ताक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम ते आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा संत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गै जस गाया सत गुर मिले ता महल बुलाए साची दर गै गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा दिखिया मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संत न की जय आशा माहे निराश रही जय संसा दुख बिना सन सेवो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वधियाए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुरु मूरत एका वर्त है नानक हर गुरु पाया वाचे है पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजगर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुरु तत न पाया करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुरु अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुरु परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत नहीं।

आनिक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाय, कर कर वेखे अपनी वड्याई, आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा, आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले देवड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मनमुख बहुत सुरे बिललांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम सबद सुख पाए, अंतर प्यार पगती रात।

सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर ते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरुमुख आपे देव सच्चे शब्द सतगुर सेवे, जरा जम तिस जोहे न साके, साचे स्यो बन आई है। कृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवन पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है। शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सभी सेवे, हों मैं विच्चों जाई है। गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्कत लूझे, सतगुर सेवे की वडियाई, कृष्णा फूक गवाई है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कह बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई, गुरमुख गिरला बूझै कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आपे, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौं मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रह दिन राती, गुरबिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया दिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई जे सो तो मैं ता मैल ना जाई सब्र तो पे ता हच्छी हो वे फिर मैली मूल ना होई है पंच दूत काया संगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हों होर ना जाना सहजे होए सो होई है बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हों मैं शब्दे खोई है आपे गुण दा

सात चेते पत होए हे मारु मैला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुरु सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रत्ना शब्द रती गुण गावे दर्शाते पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई मनमुख निंदक।

पाए सुबाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए पगत।

सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है, एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक ऐनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है, स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है, आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है, सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे।

जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी, नानक नाम मिले वडियाई। दरसा कै पत पाई है मारू महला तीजा, जो आया सो सबको जासी, दूजे पाए बांदा जम फासी। सतगुरु राखे से जन उभरे, साचे साथ समाई है, आपे करता कर कर वेखे, जिसनो नदर करे सोई जन लेखे। गुरमुख ज्ञान किस सब किस सूझे, अज्ञानी अंध कमाई है। मन मुख सहसा बूझ न पाई, मर मर जम में जन्म गवाई। गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साथ समाई है। संदे तावत मन पया मनूरा।

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जाए, सब ना विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हो मैं मार सदा सुख पाया, नाय साचे अमृत पी जाए, किलविक दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किस आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांप सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत सांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी,

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर

सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जहाँ सुध पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखा निवारी है, माया मोह

तार कमाई जो मेरे प्रभ पाई, हूं मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूं मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवै सच प्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अन दिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूं मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया, गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है, जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा।

गुरमुख एक हो जाता है। जां तुद पाना ता सच्ची कारे लाए, अवगुण छोड़ गुण माए समाए। गुण में एको निर्मल साचा, गुर कह सबद पछाता है। जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई। एक में प्रभ एक समाना, अपने रंग सदराता है। काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एक

आपे करता सब जिस करना, जी जंग सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा, आपे बसे शब्द विचारा। जो तुद भाव है सोई कर से, सच्चे से मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो। जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मति पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख तुम्हारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किलबिख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन गाता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरुमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम असहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवै साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाए, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे इक

होई खबत सलाहे से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरमुख नाम त्या

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहे। नजर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहाहे। अप्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे।

गुरमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत साहा है। गुरमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेन दे लाहा है। गुरमुख भगत सो है दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए हम दिन भगत करो लिव लाए। हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पात सहा है। गुण का दाता सच्चा कोई गुरमुख बिरला बूझे कोई। नानक जन नाम सलाहे बिजसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा। गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा। आपे करता कर कर वेख है देंदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए गुर के शब्द रते रंग लाए। हर साला है सदा सुखदाता हर बख्शे पगत सलाहा है। सतगुर सेवे से जन साचे जो मर जमे काचन काचे। अगम अगोचर वे परवाहा भगत वचल अथाहा है। सतगुर पूरा साच दृढ़ाए सच्चे शब्द सदा गुण गाए। गुणदाता वरते सब अंतर सिर सिर लिखदा साहा है। सदा हदूर गुरमुख जाते सब दे सेवे सो जंत्रा पै। अन दिन सेवे सच्ची बाणी शब्द सच्चे ओ महा है। अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन हठ कर्म फिर जो नी पाए। विख्या कारण लभ लोभ कमावे दुर्मत का दो रहा है। पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर के शब्द हर नाम चित लाए। मन तन हर रविया कट अंतर मन पीने भगत सलाहा है। मेरा प्रभ साचा असुर संगारण गुर के शब्द भगत निस्तारण। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर साहा पाप साहा है। से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए। साची बाणी अन दिन गावे निरतन का नाम विसाहा है। जिन आपे मेल बिछोड़े नाही गुर के शब्द सदा साला ही। सबना सिर तू एको साहिब सब दे नाम सलाहा है। बिन शब्द तुदनो कोई न जानी तुद आपे कथी अकथ कहानी। आपे शब्द सदा गुरदाता हर नाम जप संभाहा है। तू आपे करता सृजनहारा तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा। गुरमुख नाम देवे तू आपे सहसा गणत ना ताहा है। भगत सच्चे तेरे दरबारे सब दे सेवन पा

जे सब सलाहे बाहर काहे जाहा है। विण चाखे साल किसे ना आया, गुर कै शब्द अमृति आया। अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है। आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने। अंगिन नाम रता।

है। गुर का शब्द अमृत है वाणी, अंग दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है। सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बस से शब्द मिलाए, परमल वास।

पाहा है, मनमुख फूला ठौर न पाए। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है। आपे आप आपसाला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है। बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए, गुर कृपाते तक अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है। से जन मिले

पूरे गुर ते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सत

हाँ मैं मोह उपदय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सब तुहाया, पंच सबद मिलवा जावाया।

हर जप जाप समाहा है मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार। गुरमुख कार करे प्रभ पावे गुरमुख पूरा पाएगा। गुरमुख मनुआ उल्ट परावे गुरमुख बाणी नाद बजावे।

मुख सत से मैं सच्चो सच्चा गुरमुख सबक सुनाएदा गुरमुख हो वह सो जी पाए हो मैं माया परम गवाए।

पिता मारू महला तीजा आपके श्रेष्ठ हुकुम सब साजी आपके काप उठाप निवाजी आपे न्याय करे सब साचा साचे साथ मिलाएंदा काया कोट है आकारा।

दिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

सच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता सुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी सर।

कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अदम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा अपना आप पछाने आपे गुरमत्ती आप बुझाएंदा पाताल पुरिया लो अकारा इस विश्व वर्त हुक्म करारा।

साक्षी आए मनमुख अंग ना चेते मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुरचरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच।

ही सुख पाएंदा। लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए। बिन भगती बिस्ता विच वासा, बिस्ता विच फिर पाएंदा। कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए। आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवे चलाएंदा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तत न पछाने। आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएंदा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए। आपे थाप उठा पे वेखे, गुरमुख आप बुझाएंदा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएंदा। आप निराल मोहर संदे।

सहसा मूल न चुके विकारा गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए सच्चे सच समाए दा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाए दा जप तप संजम नाम प्यारा किलविख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल होआ सहजे सह समाए दा अंतर लोभ मन मैले मन लाए मैले कर्म करे दुख पाए कूड़ो कूड़ करे वा पारा कूड़ बोल दुख पाएंदा निर्मल बाणी को मन वसाए गुर प्रसादी सहसा जाए गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप उपाय खपाए सोई गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे मिल साचे सुख पाएंदा अनेक जतन करे इंद्री वसना होई काम क्रोध जले सब कोई सतगुरु।

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देव है सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हों मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले जो तिल कहानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएंदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

सामने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराए दा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाए दा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाए दा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की सेवा

पीजै रसना नाम से आए रस पीजै रस ही से रस पाएगा महले अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चितलाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा।

दिन सब दे सब अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाए दा, एक चित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला सिर हाथ न आवे, पद शिष्य पछताए दा, गुर के शब्द पवित्र शरीरा, तिस विच वसे सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन वसाए दा, हौ मैं गणत गुर शब्द निवारे, हर जियो हृदय रखो उड़धारे, गुर के शब्द सदा साला है, मिल साचे सुख पाए दा, सोचे ते जिस आप चिताए, गुर के शब्द वसे मन आए, आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाए दा, जिन मन विच वठ पाई सोई जाने, गुर के शब्दे आ

तेहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाए दा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिलाए, जिनको नदर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाए दा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाए दा,

वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा, गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जानदे बिलम न लाएंदा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा, मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आप मिलाए।

गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएंदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएंदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएंदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएंदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवै जो तुद पावै, गुर कै शब्दे सच समावै, आन दिन गुण रवै दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौं मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तो

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चित लाया हौं मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हौं मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई ना।

पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग न व्यापे, सहजे सह समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर सब

सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा अवर न सूझस बीजी कारा, गुरमुख सच वसै कट अंतर सहजे सच समाई है। सबना सच वसै मन माही गुर प्रसादी सहज समाई, गुर गुर करत सदा सुख पाया गुर चरणी चितलाई है। सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा, सतगुर ते नाम रतन तन पाया सतगुर की सेवा पाई है। बिन सतगुर जो दूजे लागे आवे जाए परम मरे अपागे, नानक तिन की फिर गत होवे जी गुरमुख रह शरणाई है। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची, ओ दयाल कृपा कर हर जियो रख ले वो गुर शरणाई है। अमृत रस सतगुरु चुआया दसवें द्वार प्रगट हो आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी सहजे सहज समाई है। जिनको करते तुर लिख पाई अंग दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजे नाही गुर चरणी चित लाई है। जिस पावे तिस आपे दे गुरमुख नाम पदार्थ ले, आपे कृपा करे नाम देवे नानक नाम समाई है। ज्ञान रतन मन प्रगट पया नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुर ते पाई सतगुर को सद बल जाई है। प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी कर्म मिले सुख पाई है। गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए चहु जुग निर्मल हच्छा लोए, नाम में नाम रते सुख पाया।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है। जिन सतगुरु जाता तिन एक पछाता, सर्वे रव रहा सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिनको आद मिली वडियाई, सतगुरु मन वसिया लिव लाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी। सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता। हर तिसे श्रे वो प्राणी है, जा को राखे।

जन नानक नाम जपो पव खंडन सुख सहजे रहन विहानी है जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परे

हर हर नाम जिन्हि सदा ते आया, तिन्हि गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह था

थान थन अंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय काल जपो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, तिस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र।

करम तरम जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है। मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर फिर चोटा खावे। जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो

बेरा कट कट पूरन सिर सिरैन बेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्व।

सुरत सबद रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शास्त्र सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक साथ संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को विघ्न न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले न जो है माई, सत संतोख दिया गुरु पूरे, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी, जिन जिन जपी ते सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ

सब हुक्मे सृष्ट उपाय दा लख चौरासी जोन सबाई मानस को प्रभदी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए।

गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगे पत स्यों जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ सब काले वस आप प्रभ किया। नेचल एक आप अविनाशी सो नेचल ज्योति सैंत आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा, जो जल तरह

भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, तामिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना।

जय सतगुरु साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायणा जा की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरुख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायणा।

की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जां की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया, सदा सदा संते संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सत

दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरै नर नारी आशर्मा सिमरै जात जोत सब वरना सिमरै गुणी चतुर सब बेते सिमरै रैणी अर्दिना सिमरै कड़ी मूरत पल निमखा सिमरै काल अकाल सुच

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन साध।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर

पंगना मन तन अर्पतरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही।

आद मद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सदबक्संद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना।

किंचन काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किछु ना हुआ।

तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा, एक ना पार लंघावे आपे सतगुरु जिनका सच बेड़ा, कौतक काल इहो हुकम पठाया, जी जंत उपाय समाया, वेखे विकसे सब रंग माने, रचन की ना एक आखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा तार वड्डी जिस जाई, अगम अगोचर बे

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कहीं न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

कारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत ना आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपगा पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोलो

तुद लेप नहीं इक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी सेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

इक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लैर दे पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई, देह

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेस जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, जिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का।

सद्गुरु प्रसाद। चरण कमल हृदय नितकारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्थ तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे। सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद बखान।

दिल नहीं बदले कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते सही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

सतगुर साचा मन वसै साजन उतही ठाए नानक मन तृप्तासी है सिफती साचै नाय महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा चलदिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा अज्ञानी अंध न बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या लेओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोई, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिस जे

केवड़ अवर न कोए तिस शरणाई छूटी है लेखा मंगे न कोए सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे अत क्रोध स्यो लूज दे अगे पिछे दुख पावे हर जियो अंकार ना

नानक जे इव मारिय गुरसबदी विचार इव मन मारिया न मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडियाईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला। हुक्म रजाई साखती दरगे सच कबूल साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला। अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निदनाम एक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोय महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई में

जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरे गवार मैला तीजा दुख लगा बिन सेवे हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखेदा आपे दे सजाए नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामे तृप्त नाही दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही श्लोक मैला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए इस तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए मन मुख जगत निर तन है माया नो बिलाए अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए मैला तीजा जिन उपाय मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवरना कोए खाना शब्द चंगिया जित खादे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी अंतर जब तब संजमो गुर सब दी जापे हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस्त्रा पे हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे श्लोक मैला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना

महलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब दी विचार पौड़ी, अंदर राजा तक

सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ। अमृत का रस आया मन वस्या नाओ। श्लोक मैला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू हो मैं हौ नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे। आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे। नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन तिसे समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया।

सब कोए। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोए जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया, जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया। श्लोक महला तीजा, जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा, मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार, सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आहे।

कपड भोग डरावणे जिचर भी न देख महला पंजवा। उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार, काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया, गुरमुख की तो

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैं डाहबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी।

श्रेष्ठ करण डखने महला पंजवा जे तू वत्तै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैं डी बात न पुछे को।

पे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावै त्यों चल दे किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं कीतियों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एव हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने महला पंजवा आगाहू कु तांग पिछा फेर न मोडड़ा नानक सिज इवे हावार बहुड़ न होवी जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दामित हबे जानन अपना कही न ठाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सुहावा थान जिथे प्रिय नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे

जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै, जो नर उसकी सरणी पर तिस कम्बै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै, जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै, ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावे आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म धीरा कल अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

जान चंद्र पा नगरी सुख घटाओ डोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायणा से कुत न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखं देखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवे जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवार आया अपना जिन गुरु अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार कुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दरगह मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यों नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी बिचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिले आ स्वामी जो जन हर का सेव को हर किसकी कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हे कुड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा मतड़ी

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजली।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै।

रहा। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई।

नारद वचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई। कह कबीर राम है रम छोटो नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जोलो मनो न तजे विकार। जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्म राम रहो जटा भस्म लेपन।

राम उदक जे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चा

जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकड़े तै हर

जीड़े ममता जालिया पिंड वना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरा जीड़े जे मन मृतक होए वना हम बै सतगुर बिन बैराग न हो।

रामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार मुकत चार सिद्ध मिलकर दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहू जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भविकन अधिक करयो। नवनिधि ठाकुर दई सुदा मैं, धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस, नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरियो पसुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न कीजे कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बसा।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन करम सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर उच

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुध बिन अड न मोलो कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे खलता पैसर बार साधन बिनो करे।

सुख मैली, नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सोखे अगन पखे। अगन रस सोखे मरिए चोखे, भीषो किरत नहारे। रस फिरे छाया धन ताते, टीन लवे मंज पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए, सुख तिस साथ संभाले। नानक जिसनो यो मन दिया, मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए। फिर धरनी आवे मरिए हावे, दामन चमक डराए। सेज इकेली खरी दुहेली, मरण पया दुखमाए। हर दिन नींद भूख को कैसी, कापड़ तन न सुखावे। नानक सा सोहागन चंती, फिर कै अंक समावे। बादों परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी। बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते। प्रिय प्रिय चवे बबीहा, बोले भुयंगम फिर डसंते। मच्छर डंग सायर पर सुबर, बिन हर क्यों सुख पाई है। मानक पूछ चलो गुरु अपने, जय प्रभ तै ही जाइए। असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मिले दूजे पाए हुई। झूठ विभूति तापिर मोती, को कह कहां से फुले। आगे काम पिछे रुत जाडा, देश चलत मन डोले। दै दिस सा

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अज

सच संभालिया ऐन सदेश विचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुग परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट था पया सो प्रभु गुरमुख जानिया करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संताप है ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आप है तेई अड़े घर सबद पति नी सावरड़ा तिर पानी नानक सदगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

तू निज घर वसेड़ा हो रुल बस मैं ढेरी बिन अपने ना है कोई न चाहे क्या कही है क्या की जय अमृत नाम रसन रस रसना गुर सब दी रखी जय बिन नावे को संग न साची आवे जाए घनेरी ना निकला हाले घर जाइए साची सचमत तेरी साजन देश विदेशी अड़े सा नेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुन नैन भरेंदी मुन नैन भरेंदी गुण सारे दी क्यों प्रभु मिला प्यारे मार्ग पंथ न जानो बिखड़ा क्यों पाई है फिर पारे सदगुरु सबदी मिले विसुनी तन मन या गहरा है नानक अमृत बिरस महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाख है महल बुलाए लिए।

जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी। नानक आपे आप पहचाने गुरमुख तत् बिचारी। तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभु कृपा तारी। जग जीवन दाता पुरुष विदाता सहज मिले बनवारी। नगर करे तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला। प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपूर

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम। प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल तारिय राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुरु बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किचना है जा तू मेले ता हों आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हों तिवे चला। तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आरा दिया। तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। सुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिन से हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाई ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका छाओ थे ओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा एक ओंकार।
सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई। ठाकुर तेरा महल अपारा, सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमक दृष्ट पेख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा। आस प्यासी पिरके ताई, ज्यो चात्रिक बूंदे रे। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुर पूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कहिए, तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यो सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मति जित हर पाविए रे। ज्यो बछरा देख गऊ सुख माने, त्यो नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभु लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यों गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किच किच किच जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की कूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी।

अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देख समोदर रहस्य मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी, हिलारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंचदास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल रहाओ, अनिक जतन गवन करो, खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारे हो, नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर, लग संतना पग पाल, केदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो, चरण कमल संग त्यान, केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कवन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रत पाले सगल संभाले, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरख विधाते, कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी।

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दर सारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ।

मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभु जियो होए साथ। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना तप स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिखिया रस ओगवत नै निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात। किदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल कही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी। किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक हान नहीं निहोर। किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान। किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रो आप राख्यो ने उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार। किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुख मली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली रहाओ गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, कट कट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निध गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरण आई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सह, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा दिन सवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास है बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यो देहुरी कत तोबा पावे, दर्श बिहूना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक नाम आवे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरणे संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे।

निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक

अंधकार कहे नासा, निरपव पूर रहे परम्पादा, कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बस के पार चलाए, पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक, आपे है पासारी, आपे देह दिस आप चलावे, नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गोन पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, निधि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फिरावो, मन मतवार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, है जे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझे, हर रस पावे भाई। जेते कट अमृत सभी में पावे, तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवा दर फूले, तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से, कह कबीर बिचारी। उबट चलन ते ए मद पाया, जैसे खोंद।

राम ना जपो कवन प्रम पूले, तुम ते काल ना दूरे, अनेक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के विद औद बिहान कह कबीर अंक की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे

तुझते बाहर किछु ना होए, तू कर कर देखे जाने सोए, क्या कही है किछ कही ना जाए, जो किछ है सब तेरी रजाए रहाओ, जो किछ कर

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस दियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटस बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब हूँ न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिन जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंदे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंदुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंदलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ से किरतारथ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभो न छूटस आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटस गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंदले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीर्थ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पसम लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

कोई। ब्रह्म बिन देखो ब्राह्मण होई, जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा। इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

साचा फल पाई। रे जन कैसे करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा। रहाओ एहो अकार तेरा है तारा, खिन में बिन से करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम न फूलो कोए। पैरों महला तीजा मैं कामन मेरा कंत करतार, गिहा कराए तेहा करी सिगार।

तिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पणत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई।

गुरु मिलाए, नानक हृदय नाम वसाए, पैरों महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिना प्राप्त होए, हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वडियाई दे रहाओ, राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नामे मनमुख जमपुर जाए, औखे होवे चोटा खाए, आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए, पैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ, अंतर प्रीत पगत साथी होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम वसे मन आए, आपे वेख वेखन हार, नानक नाम रखो उधार, पैरों मेला तीजा, कल युग में राम नाम उधार, बिन नामे माथे पावे चार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरो मैला तीजा। कल युग में बहु कर्म कमाए नारुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों मैला तीजा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन

बिसन रुद्र उपाया, नानक निश्चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों मैला तीजा मन मुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर सबदी विचारा हर जियो सत्संगत मेलाए, नानक तिसनो देव दयाई जो राम नाम चितलाए रहाओ। ममता काल सब रोग व्यापे तिन जम की है सिरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवे जिन हर राख्या उधारा, जिन हर का नाम ना गुरमुख जा।

0: लाए, जो इच्छे सोई फल पावे, गुरबाणी सुख पाए।
1: पैरू मेला तीजा, दुख विच जम्मे दुख मरे, दुख विच कार कमाए, गर्भ जो नी विच कदे ना निकले, बिस्ता माई समाए, त्रिग त्रिग मन मुख जन

पुरखा सबद सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिले वडियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार। से जन निर्मल जो हर

पूरे पाग पाए जिनी राम नाम सितलाया पैरों महला तीजा। शब्द बिचारे सोजन साचा जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव मन मुख मूल गवावे।

हमें रोग न जाई, पर लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुरु सेवे परम गत पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिना मन।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रया, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अन दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना तिसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

के मार्ग पाए। आपके गुरुमुख देव आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुख दाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम ना करे। रहाओ माता उपदेश प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छो

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, किन मैं पयान रूप निक्षया थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया, प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उड़ारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला की जा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई, जुग जुग पगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन पगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगते, टूट गई माया जंजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता तत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई नाहे, हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राख्या भावे, किसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैयल सब ते भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजू।

हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते, वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याई है, जिन में लिया सतगुरु कृपा तार, पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, जिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कौ हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का डे मारी, ते नर निंदक सोभ न पावे, तिन नख काटे सृजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले।

नानक कह कर केवल नाम। पैरों महला पंजवा जेसो लोच लोच खाव आया, साकत हर हर चीत न आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते रहाओ। पात्र को बहु नीर पवाया, मैं पी गए अदक सूकाया। खट शास्त्र मूर्खे सुनाया।

पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहल ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना खत्म।

तो खुद खसम मेहरबान, अलो ना विसरे दिल जी प्राण, पैरों महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सत कर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवो, हर हर हर

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणा।

श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करें अन सेवा कवन बिछया रसमाता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगड़ ताज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे, मन मुख अंध अज्ञाना, हर की पगत करे तिन निंदे, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभु का, सात कहते मेरा। अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप पे शरणाई, गुरमुख नानक जगत कराया। पैरो महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए।

योग तेज सन्यास सहते क्यों जत जंगम कापड़ाए तपी तपी सर मुन में पेख्यो नटना तुक निरताए चहु में पेख्यो खट में पेख्यो दस अस्ति सुमिर।

पंजवा जिस तू राखे कुछ कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वै जे करे चोज विदानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार राव जिनसे व्या निरपौ सुख दाता।

जन नानक अपर नफा कह पोए पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरे नर हर तौ करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़ पचिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौ करिए जे दूजा करता तौ करिए जे अन्याय को मरता तौ करिए जे तुझ जाने नाही क्या करिए जा भरपूर समाही। तौ करिए जे

दुतिया नासत इतरया समाए राखो पैज नानक शरणाए पैरों मैला पंजवा बिन बाजे कैसो निरतारी।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सब ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए कुरंग।

एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पंजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्याप।

आधार कहो नानक जिस आप दियार हैरू महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संतार।

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकि रेन बिरला को पाए। हैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आलक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारे। राच रहा बिरथा व्यवहार राओ, एक माया रंग

पूरन होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुरु कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम विधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता।

रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विलास, हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक ने।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लखे न जाए जा का परवासा सब कट माए।

फिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी इज्जत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विकला का सब

नाम हमारे गुरु की सेव, गुरु पूरे दृढ़ो हर नाम, सबके उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन स्नान, नाम हमारे पूरन दान, नाम लेते सगल पवित्र।

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन हार।

मूड़ मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राखे आप किस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे किस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे दुख न आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा

0: सोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुरते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे नृत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए।

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मेल।

तन तन साज तन हर नाओ, आठ पैर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, पैरों महला पंजवा, गुर सो प्रसन्न होए पाओ गए, नाम निरंजन मन में ले, दीन दयाल सदा कृपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन पने, रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन में बिन स्यो महाप्रेत, आठ पैर हर हर जप जाप।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देव न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभ कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरो महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरो मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललित अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख

आए हम मूड मुग्ध किछ बूझे नाही तू आपे दे बुझाई जो तुद पावे सोई करसी अवर न करना जाई जगत उपाय तुद तंदे लाया पूंडी कार कमाई जन्म पदार्थ जुए हारिया शब्द सुरत न पाई मन मुख मरे तिन किछु न सूजे दुर्मत अज्ञान अंधारा पव जल पार न पावे कभी डूब मोए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की बाणी शब्द पछाती साच रहे लिवलाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद

आया, कहो नानक तत्तै तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

सोतर वर चंदन होय निबरियो पारस के संग तांबा बिगरियो सोतांबा कंचन होय निबरियो संतन संग कबीरा बिगरियो सो कबीर रामे होय निबरियो माथे तिलक हाथ

पर ईत ऊत की सोजी परे कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो त्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद रब ऊपर गहरा ख्या चंद। पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेरा दंड सिर ऊपर बसे।

क्यों लीजे गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ 5-25 मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप